0: Tracks with Radio Musty.
1: सुप्रभात जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। 5:05 हुए हैं। क्या बात, सुबह सुबह देख रहे हैं ब्यूटीफुल साइंस कि आज का दिन बीतने वाली है आराम से। तो इट्स नमनी 8 बजे तक आपके लिए इन योर चिलैक्स शो।

0: तो यही पर आपकी अर्ली मॉर्निंग को बनाएंगे स्वीट. स्टे ट्यून्ड.
1: Shacks with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Breakfast with Radio Masti.
1: वैसे इस म्यूजिक के गाने से ऐसा लग रहा था कि हम भी भाग रहे हैं बीट के साथ, जैसे घोड़ा भागता है, दौड़ता है। वैसे भी टाइम अभी ऐसे ही रेत की तरह फिसलती जा रही है, संडे तक पहुंच गए हैं हम, देखते देखते जुलाई का महीना भी फिसल रहा है। वैसे हम क्या कर सकते हैं। And yes, chill acts of show ongoing है, 5:20 है, तो जल्द ही राशिफल होने वाला है, तो कनेक्टेड रहना ये जानने के लिए कि आज का दिन आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आएगा। अभी के लिए गानों के साथ वाइब करते हैं एंड इस मॉर्निंग को बनाते हैं अमेजिंग।
0: With Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

म्यूजिक जारी है आपका साथ देने के लिए RM2 रेडियो मस्ती पर ही मैसेजेस और डेडिकेशंस की लाइन खुली हुई है. अगर सुबह सुबह आप करना चाहते हो किसी को एक स्पेशल गाना डेडिकेट 5499124 पर आपके मैसेजेस भेजिए. थोड़ी ही देर में इट्स गोना बी योर होरोस्कोप टाइम.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: इन्हें सभी के लिए चलिए जानते हैं आज का राशिफल. शुरुआत करते हैं with
2: Aries मेष राशि.
1: आज आपका उत्साह देखने लायक होगा. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या अच्छी खबर मिल सकती है. घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें. लकी कलर आपका है रेड और नंबर है 9.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज आराम और सुकून का दिन है. खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए. खाने पीने में संतुलन बनाए रखें. लकी कलर आपका है हरा और नंबर है 6.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज आपकी बातों का जादू आज सब पर चलने वाला है. किसी नए विचार से आपको लाभ मिल सकता है. मुस्कुराहट बनाए रखें. लकी कलर आपका है येलो और नंबर है 5.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: परिवार के साथ बिताया हुआ समय आपके मन को खुशी देगा. पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं. दिल की बात कहने का अच्छा समय है. लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 2.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. किसी छोटे काम में भी सफलता मिल सकती है. अपनी ऊर्जा को सही दिशा दी. लकी कलर आपका है सुनहरा और नंबर है 1.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज योजना बनाने और अगले हफ्ते की तैयारी के लिए अच्छा दिन है. छोटी बातों पर अधिक चिंता ना करें. लकी कलर आपका है नेवी ब्लू और नंबर है 7.
2: लीब्रा तुला राशि.
1: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. किसी अपने के साथ दिल खोल कर बात करने से मन हल्का होगा. शाम सुखद रहेगी. लकी कलर आपका है पिंक और नंबर है 6.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: आज अपनी सेहत और मानसिक शांति पर ध्यान दें. प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना आपके लिए लाभदायक रहेगा. लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 8.
2: सजिटेरियस धनु राशि.
1: आज किसी नए अनुभव का मौका मिल सकता है. छोटी सी आउटिंग या ड्राइव आपका मूड फ्रेश कर देगा. लकी कलर आपका है ऑरेंज और नंबर है 3.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: घर के कामों में व्यस्त रह सकते हैं लेकिन दिन संतोषजनक रहेगा. किसी बुजुर्ग की सलाह आपका आपके काम आ सकती है. लकी कलर आपका है ब्राउन और नंबर है 4.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि.
1: आज रचनात्मक सोच आपको नए आइडियाज देगी. अपनी कला या शौक के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालिए. लकी कलर आपका स्काई ब्लू और नंबर है 11.
2: पाइसेस मीन राशि.
1: आज का दिन शांत और सुखद रहेगा. मन की बात लिखना या संगीत सुनना आपको खुशी देगा. पॉजिटिव सोच बनाए रखिए. लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 12.
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

गया हम भी गए जग में गर हम मस्त नजर की कतार दिल के उतर गई पास इन प्यार की राहों में हो इन प्यार की राहों में दिल भी गया हम भी गए जग में गर हम मस्त नजर की कतार हाँ।

0: चलिए अभी सुनते हैं आज का पहला फ्लैश आपसे अभी नमस्कार
1: नमस्कार नीलमणि श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। प्रधानमंत्री दफ्तर की चीफ ऑफ स्टाफ और डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के सलाहकार श्री राकेश बकोगी कल रात शिकायत दर्ज कराने सीसीआईडी पहुंचे। मामला क्या है? सोशल मीडिया पर पब्लिक स्टेटमेंट नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ तथाकथित स्क्रीनशॉट वायरल हो रही है। इन स्क्रीनशॉट में ये दिखाने की कोशिश की गई कि इस मामले में

0: एफ फाइनेंशियल क्राइम कमीशन के एक अधिकारी को निर्देश दिए थे। इस मामले में एमएसएम के कई पूर्व मंत्रियों जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ भी शामिल हैं उनसे पूछताछ हुई या होने वाली है। राकेश बकोरी का क्या कहना है? इन संदेशों में अपना नाम और फोन नंबर देखकर राकेश बकोरी काफी दुखी है। उन्होंने इसे एक गलत इरादे से की गई हरकत बताया है और अधिकारियों से मांग की है कि इन पोस्ट को पीछे के पीछे किसका हाथ है इसकी पूरी जांच की जाए। पॉल बेरांजे ने कल सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस यानी कि एफएमपी की सेंट्रल कमेटी की एक बैठक के बाद पूर्व उप प्रधानमंत्री ने प्रेस को बुलाया। उन्होंने इस मंगलवार यानी कि 28 जुलाई को राष्ट्रीय सभा में दो बृहद विधेयकों को एक साथ पेश करने की योजना का विरोध किया। पॉल बेरांजे ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि ये दस्तावेज सांसदों को कैसे भेजे गए हैं। उनका ये भी कहना है कि संसद सत्र से ठीक 3 दिन पहले आधी रात को इतने महत्वपूर्ण बिल भेजना बिल्कुल गलत है। कल जारी की गई एक विज्ञप्ति में नेशनल लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी ट्रेन चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों पर जवाब दिया। एनएलटीए ने याद दिलाया है कि साल 2005 के बाद से मॉरिशस में टैक्सी के किराए की गई आधिकारिक दर तय नहीं है, इसलिए उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सफर शुरू करने से पहले ही ड्राइवर से किराया तय कर लें। इसके साथ ही एनएलटीए ने सभी टैक्सी चालकों से अपील की है कि वे आम जनता के कल्याण में सही और उचित किराया ही ले। और विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन हमले में 11 लोग मारे गए हैं और 14 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, उत्तर की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी, खासकर उत्तर पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर। शाम तथा आज रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा उत्तर की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान, सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:42 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 5:50 पर। तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 आप विस्तार के साथ प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Chillax with Radio Masti.
3: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: सुबह का टाइम है, 6:10 हुए हैं। आशा है कि आपने अच्छी नींद पूरी कर ली। साथ देते रहिए आरएमजू रेडियो मस्ती पर ऐसे ही, क्योंकि आपके संडे को अमेजिंग बनाने के लिए आपके लिए नाइस सिलेक्शन है। सो साथ में वाइब करते हैं एंड इस मॉर्निंग को बनाते हैं अमेजिंग।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.
1: And also big hello to all those who connected ho gaye hain hamare saath.

0: दिया।
1: कभी सोचा है
0: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।

0: Chillax with Radio Masti.
1: 6:24 हुए हैं और आपके लिए पॉजिटिव कोट है कि लोग आपके शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें ये हमेशा याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो आज किसी को एहसास दिलाइए कि वो कितने ज़रूरी है आपके लिए। हो सकता है कि आपकी एक बात उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल बन जाए। एंड आप सभी को एक प्यारा सा पॉजिटिव सुकून भरा संडे विश करती हूँ। आरम टू रेडियो मस्ती के साथ 6:30 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार। अभी के लिए वापस 90s में ले चलते हैं आपको, क्योंकि इट्स योर चिलैक्स शो।
0: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

मिला लीजिए इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 हैं। रविवार 26 जुलाई 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस में घर बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 23 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कंस्ट्रक्शन प्राइस इंडेक्स में एक साल में 6.1% की ही है बढ़ोतरी। शुक्रवार से मॉरिशस को अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था से

0: रखा गया है बाहर। इसका मतलब ये है कि मॉरिशस के निर्यातकों को अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट के तहत अमेरिकी बाजार में मिलने वाली छूट और लाभ आगे भी मिलते रहेंगे। घरों का बिजली बिल कम करना और देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य से शनिवार को क्यूपिप के हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम की आधिकारिक शुरुआत की गई। ये परियोजना उन परिवारों के लिए है जिनकी मासिक आय 1,50,000 रुपए से कम है। और विदेश में रूस के कब्जे वाली यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या इलाके में शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन हमले में 11 लोगों की हो गई है मौत और 14 लोग हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्थानीय खबरों के साथ और इन सुर्खियों को देते हैं विस्तार। प्रधानमंत्री दफ्तर में चीफ ऑफ स्टाफ और डॉक्टर नवीन रामगुलाम के सलाहकार राकेश बकोरी कल रात शिकायत दर्ज कराने सीसीआईडी पहुंची। सोशल मीडिया पर पब्लिक स्टेटमेंट नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ तथाकथित स्क्रीनशॉट वायरल हो रही है। इन स्क्रीनशॉट में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने मेयर कैंटाइल मैरिटाइम ग्रुप मामले में फाइनेंशियल क्राइम कमीशन के एक अधिकारी के निर्देश दिए थे। इस मामले में एमएसएम के कई पूर्व मंत्रियों जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ भी शामिल हैं उनसे पूछताछ हुई या फिर पूछताछ होने वाली है। इन संदेशों में अपना नाम और फोन नंबर देखकर राकेश बकोरी काफी दुखी है। उन्होंने इसे एक गलत इरादे से की गई हरकत बताया है और अधिकारियों से मांग की है कि इन पोस्ट से पीछे किसका हाथ है इसकी पूरी जांच की जाए। पॉल बेरांजे ने कल सरकार के खिलाफ करा रुख अपनाया। फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस यानी कि एफएमपी की सेंट्रल कमेटी की बैठक के बाद पूर्व उप प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने इस मंगलवार यानी कि 28 जुलाई को राष्ट्रीय सभा में दो बृहद विधेयकों को एक साथ पेश करने की योजना का विरोध किया। ये दो विधेयक हैं फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल। दूसरे विधेयक के जरिए लगभग 58 कानूनों में बदलाव करने की तैयारी है। पॉल बेरांजे ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि ये दस्तावेज सांसदों को कैसे भेजे गए। उनका यह भी कहना है कि संसद सत्र से ठीक 3 दिन पहले आधी रात को इतने महत्वपूर्ण बिल भेजना बिल्कुल गलत है। इसी से किसी भी पक्ष को इन्हें पढ़ने और समझने का मौका ही नहीं मिलता है। एफएमपी नेता के अनुसार सरकार का यह तरीका लोकतांत्रिक बहस और आपसी सलाह मशवरे का पूरी तरह से अपमान है। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। कल जारी की गई एक विज्ञप्ति में नेशनल लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी ट्रेन चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों पर जवाब दिया। एनएलटीए ने याद दिलाया कि साल 2005 के बाद से मॉरिशस में टैक्सी के किराए की गई कि कोई आधिकारिक दर तय नहीं है। इसलिए उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सफर शुरू करने से पहले ही ड्राइवर से किराया तय कर ले। इसके साथ ही एनएलटीए ने सभी टैक्सी चालकों से अपील की है कि वे आम जनता के कल्याण में सही और उचित किराया ही ले। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मॉरिशस में घर बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 23 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार निर्माण मूल्य सूचकांक यानी कंस्ट्रक्शन प्राइस इंडेक्स में एक साल में 6.1% की बढ़ोतरी हुई है। काउंसिल ऑफ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर्स के चेयरमैन देवेन दालिया के अनुसार इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बाहर से मंगाए गए सामानों की कीमत, फ्रेट मैरिटाइम का महंगा होना और सीमेंट जैसी स्थानीय चीजों के दामों में उछाल आना है। हालांकि इस महंगाई का असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ रहा है। बड़े निर्माण ठेकेदारों यानी कि
1: कंट्रैक्ट

0: एक्टर्स को कभी कभी उनके कंट्रैक्ट में मौजूद एडजस्टमेंट क्लोज के जरिए सुरक्षा मिल जाती है, जबकि आम लोगों को बढ़ी हुई कीमतों और टैक्स का पूरा बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। इस शुक्रवार से मॉरिशस में अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि मॉरिशस के निर्यातकों को अगुआ यानी कि अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट के तहत अमेरिकी बाजार में मिलने वाली छूट और लाभ आगे भी मिलते रहेंगे। सूट कपड़े बनाने वाली कंपनी वेंसम लिमिटेड के निदेशक अविनाश गुबर्धन के अनुसार यह निर्यात सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उनका यह भी कहना है कि ये सफलता सरकार द्वारा मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर की गई लंबे समय की कड़ी मेहनत का परिणाम है। हमारी सहयोगी राजमिला सीतामुनि ने उनसे बात की, विवरण टीना बुदना का।
1: Donc ceci donné, c'est que tous les produits vont être comme c'était avant.
2: इसका मतलब ये है कि हमारे पास सभी उत्पाद फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले अगुआ के तहत थे, यानी हमारे उत्पाद यूएस में बिना किसी ड्यूटी या टैरिफ के प्रवेश कर सकेंगे। पहले 20% टैरिफ लगाया गया था, फिर उसे 15% और उसके बाद 10% कर दिया गया। इसलिए ये एक अच्छी खबर है कि अब टैरिफ के मामले में बाजार तक पहुँच आसान हो गयी है। अब हम अगुआ के नवीनीकरण और द्विपक्षीय ट्रीटी का इंतजार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अब देखना होगा कि अगुआ से क्या परिणाम निकलता है। जब द्विपक्षीय ट्रीटी का समझौता अंतिम रूप ले लेगा, तब हम ये तय कर पाएंगे कि बाजार तक सबसे बेहतर तरीके से कैसे पहुंचा जाए। साथ ही खरीदारों की दिलचस्पी भी बढ़ेगी क्योंकि उन्हें बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी।
1: Une fois que ça s'est finalisé, on va pouvoir développer une stratégie à long terme, comment on approche le marché, acheter aussi pour plus intéressé, parce qu'on a une visibilité.
0: घरों का बिजली बिल कम करना और देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य से शनिवार को क्यूपिप में हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम की आधिकारिक शुरुआत की गई। यह परियोजना उन परिवारों के लिए है जिनकी मासिक आय 1,50,000 रुपए से कम है। इसके तहत 3,600 परिवारों को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। ऊर्जा मंत्री पैट्रिक असियावादेन ने कहा कि इस पहल से कोयले और पेट्रोलियम पैदावारों के आयात में कमी आएगी और देश ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। सबसे पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद सब्सिडी प्राप्त करने के लिए डीबीएम में आगे की कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। गीता सुनारायण की रिपोर्ट।
3: हाउसहोल्ड रूफटॉप फोटोवोल्टाइक योजना जिसकी औपचारिक लॉन्चिंग क्यूपिप में की गई 3,600 परिवारों को लाभान्वित करेगी। इस सहायता योजना के तहत घरों की छतों पर सौर फोटोवोल्टाइक पैनल लगाने के लिए 25% तक की सब्सिडी अधिकतम 75,000 प्रति परिवार प्रदान की जाएगी। ये परियोजना सीबी डीबीएम और वित्त मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से लागू की जा रही है। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरे कहते हैं,
4: l'eau toit la case y amène la croissance. Prenant à peu près 400 mégawatts d'énergie renouvelable, l'investissement dedans.
3: घर की छत पर हर एक सोलर पैनल वृद्धि लाती है। करीब 400 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का निवेश इसमें किया जाएगा। करीब 41 बिलियन रुपए का निवेश। इसके सफल होने पर खरीद शक्ति बेहतर होगी, नौकरी पैदा होगी, शिक्षा में संसाधन मिलेंगे, स्वास्थ्य में भी और समाज सुरक्षा में भी। मंत्री पैट्रिक असियावादेन ने ऊर्जा आपूर्ति मजबूत करने के लिए कई कदमों पर बात की। सप्ताह के दौरान चीनी सरकार के साथ 1 बिलियन रुपए की संधि पर हस्ताक्षर करेंगे ताकि और बैटरी खरीद सकें। इसलिए ये परियोजनाएं शुरू की हैं। 2026 में हमें जमीन का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा की परियोजनाओं को जानना चाहिए। जमीन नहीं होगी तो परियोजनाएं नहीं होंगी। ये एग्रीवोल्टाइक परियोजना कृषि जमीन और सोलर पैनल का मिलन है, इसलिए प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये देखने के लिए कि क्या सुधार ला सकते हैं, कानून में

0: क्या बदलाव ला सकते हैं ताकि ये परियोजनाएं 1.5-2 साल में नेटवर्क में शामिल हो।
1: Pour qu'ils aient un projet qui nous mette l'eau à la table, mais dans les 1 an et demi, 2 ans, ça vient le réseau.
0: हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक योजना के लिए पात्रता का मुख्य मानदंड है कि परिवार की मासिक आय 1,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों को सबसे पहले सेबी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। इसके बाद उन्हें डीबीएम से संपर्क करना होगा ताकि वे अपने घर की छत पर सौर फोटोवोल्टाइक पैनल लगाने के लिए 25% सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकें।
2: इसके अलावा इस काम में रुचि रखने वाले सप्लायरों और इंस्टॉलरों को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आधिकारिक बयान पर दिए गए क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है। फिलहाल इंस्टॉलर्स की योग्यता के नियमों यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आम लोगों के लिए ये योजना कब शुरू होगी इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी जारी नहीं की गई। बजट 2026-2027 में पेश होने के एक महीने से भी अधिक समय बाद इस मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल 2026 पेश किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए 25 कानूनों में बदलाव करने का प्रस्ताव है ताकि टैक्स व्यवस्था, सरकारी अर्थव्यवस्था और साथ ही रिटायरमेंट पेंशन सुधार से जुड़ी बजटीय घोषणाओं को लागू किया जा सके। स्कूल की दूसरी तिमाही समाप्त हो जाने पर अब सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाओं के बाद राहत की सांस, परिवार के साथ घूमना फिरना और तीसरी तिमाही की तैयारी के लिए पढ़ाई। मॉरिशस के परिवारों ने इस ब्रेक के लिए अपने प्लान साझा किए हैं। लोग शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर और रेस्टोरेंट जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि समुद्र तट की सैर के लिए थोड़े बेहतर मौसम का इंतजार किया जा रहा है। टीना बुदना की रिपोर्ट।
3: कई हफ्तों की पढ़ाई और परीक्षाओं के बाद छात्रों ने ली राहत की सांस। कई विद्यार्थियों ने छुट्टियों के दौरान परिवार और दोस्तों के साथ घूमने फिरने की योजनाएं बना ली है। माता पिता भी खुश है कि परीक्षाओं की तैयारी का दबाव अब कम हो गया है। मैंने अपना ब्रेवे 1 महीने पहले पूरा किया और अपने परिणामों से बहुत खुश था। अब मैं छुट्टियों में आनंद लेना चाहता हूँ और खुद पर भी ध्यान देना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती हूँ, जैसे उसे बीच चले जाना और परिवार के साथ भोजन करना आदि। मैं अपनी माँ के साथ भी समय बिताऊंगा। मैं अपनी छुट्टियों में खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत और रिवीजन किया था। लेकिन कुछ छात्रों के लिए ये छुट्टियाँ पूरी तरह आराम की नहीं होंगी। वे इस समय का उपयोग पढ़ाई और रिवीजन जारी रखने में करेंगे ताकि तीसरे टर्म और साल के अंत की परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी की जा सके। मेरा बेटा अभी ग्रेड 11 में है। मैं उसके साथ थोड़ा रिवीजन करके समय बिताना चाहती हूँ क्योंकि पढ़ाई जारी रखना भी बहुत जरूरी है। मेरी बच्ची पिसाक कर रही है। छुट्टियों में हम छोटी छोटी आउटिंग्स भी करेंगे, जैसे मेबर्ग म्यूजियम, डच लैंडिंग स्टेशन आदि जगहों पर जाना। मनोरंजन की बात करें तो सर्दियों के मौसम में परिवार नजदीकी गतिविधियों को पसंद कर रहे हैं, जैसे मॉल्स, सिनेमा और रेस्टोरेंट्स उनकी पहली पसंद में शामिल है। कई बच्चे इस ब्रेक का इस्तेमाल ज्यादा स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी करना चाहते हैं।
4: Les enfants chez moi, ils aiment bien pratiquer le sport. Donc l'aîné pratique le foot, puis le second il fait du tennis d'étape. Donc là pendant les vacances, ça va augmenter.
3: वहीं दादा दादी और नाना नानी के लिए ये छुट्टियां परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका है। 6 पोते पोतियों की दादी जानिन बताती है कि इस दौरान उन्हें साथ में खाना बनाने, बाहर जाने और बच्चों के साथ यादगार पर बिताने का अवसर मिलता है, जो स्कूल के समय में हमेशा संभव नहीं हो पाता। मुझे खुशी और गर्व है कि मेरे पोते मेरे साथ

0: अच्छा समय बिताते हैं, हम साथ में छोटी छोटी आउटिंग्स करते हैं, अच्छे खाने का आनंद लेते हैं और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं।
1: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। मॉरिशस इस साल एचआईवी एड्स पर 22वें हिंद महासागर संगोष्ठी की मेजबानी करेगा। हालांकि इसकी सटीक तारीख तय होना अभी बाकी है। हर 5 साल में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और एचआईवी के खिलाफ संघर्ष में जुटे गैर सरकारी संगठनों को एक मंच पर लाएगा। कुमोरो और मेडागास्कर के बाद अब मॉरिशस इस नए संस्करण का मेजबान बनने जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है एचआईवी और यौन संचारित संक्रमणों के खिलाफ क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करना, टिकाऊ वित्तीय सहायता जुटाना और एचआईवी, हेपेटाइटिस तथा यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। इस आयोजन में लगभग 300 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। पाइल्स संस्था के संस्थापक निकोला रिची से आशी, हमारी सहयोगी आशी बाचू की यह बातचीत सुनते हैं, तफसील के साथ सुमहरा अकबर अली।
2: Nous avons une population qui migre, qui bouge dans l'océan Indien et donc
3: हमारी जनताएं एक जगह नहीं रहती। बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो वायरस के फैलाव को और मुमकिन बनाते हैं। एचआईवी एड्स का भी आसानी से फैलाव होता है। इलाके में ड्रग तस्करी के माध्यम भी बढ़ गए हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस पर जोर नहीं देते थे, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र की महामारी छोटी लगती थी, खासतौर पर अफ्रीकी महाद्वीप के मुकाबले। लेकिन अब फिनेंसिंग के लिए बातचीत कर रहे हैं।
2: ओसियन इंडियन का longtemps était ignoré des grands bailleurs internationaux parce que notre épidémie est considérée petite ou faible par rapport au continent africain qui où là il y a des prévalences qui sont beaucoup plus importantes.
1: और विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या क्षेत्र में शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन हमले में 11 लोग मारे गए हैं और 14 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। उधर इंडोनेशिया में स्पीड बोट के डूबने के बाद लापता लोगों में से 12 लोगों को बचाया गया है। इनमें 11 यूरोपीय पर्यटक और एक स्थानीय क्रू मेंबर शामिल हैं। अब भी बोट के कप्तान की तलाशी की जा रही है और इस प्रांत के खोज और बचाव कार्यालय के प्रमुख ने बताया कि शुक्रवार सुबह सेंट्रल सुलावेसी प्रांत की तोजो उनानुना रेजेंसी के एक डाइव रिजोर्ट से इस प्रकार के एक स्पीड बोट उस पोर्ट के लिए निकले थे, लेकिन तय समय पर नहीं पहुंची हैं। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, उत्तर की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी, खासकर उत्तर पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर। शाम और आज रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा उत्तर की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगुनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:42 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:50 पर।

चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस में घर बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 23 जुलाई को जारी

ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कंस्ट्रक्शन प्राइस इंडेक्स में एक साल में 6.1% की ही है बढ़ोतरी। शुक्रवार से मॉरिशस को अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था से रखा गया है बाहर। इसका मतलब ये है कि मॉरिशस के निर्यातकों को अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट के तहत अमेरिकी बाजार में मिलने वाली छूट और लाभ आगे भी मिलते रहेंगे। घरों का बिजली बिल कम करना और देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य से शनिवार को क्यूपिप में हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम की आधिकारिक शुरुआत की गई। ये परियोजना उन परिवारों के लिए है जिनकी मासिक आय 150,000 रुपए से है कम। और विदेश में रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन हमले में 11 लोगों की हो गई है मौत और 14 लोग हो गए हैं घायल। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम कादर को धन्यवाद देना चाहेंगे। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

आइए शोक समाचार सुनते हैं। तागोरोद ग्रांगुब में, तागोरोद ग्रांगुब में 88 साल की, 88 years old की श्रीमती असमुन तिलकचंद, पैदाइशी नाम गुगा, और जिन्हें सब लोग कृष्णवंती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री आरिदत्त तिलकचंद के घर तागोर रोड ग्रांगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांगुब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। अवेन्यू जॉन केनेडी वाक्वामे, अवेन्यू जॉन केनेडी वाक्वामे 91 साल की, 91 years old की श्रीमती मीरा अपाजी, पैदाइशी नाम गनू, और जिन्हें सब लोग मीरा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती शोभा सुनु के घर अवेन्यू जॉन केनेडी वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो वाक्वा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मारीजानी रोजबेल में 69 साल की, 69 years old की श्री रूप नारायण रिदोई, जिन्हें सब लोग सुरुज के नाम से भी जानते थे, और जो फिनिक्स बेवरेजेस के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर मारीजानी रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। कारोलालियान वाक्वा में 65 साल की, 65 years old की श्रीमती दनमौती लकमा, पैदाइशी नाम रसोकल, और जिन्हें सबोग नालिनी के नाम से भी जानते थे, और जो LTC के पूर्व कर्मचारी थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके पति श्री लखमा सिवचन के घर काहुलालियान वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 43 एम्पासा रोबर्टसन बुबासे में 71 साल के, 71 years old के श्री महेश गोबिंद सिंह, जिन्हें सब लोग सुनील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर नंबर 43 एम्पासा रोबर्टसन बुबास

रास्ते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मुजलो लेन रुजबेल में 78 साल की 78 years old की

0: उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके पति श्री जगेश्वर रामफल के घर मुजलो लेन रुजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रुजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM जवाहरलाल नेहरू एवेन्यू क्लियाफोन नंबर 1 फिनिक्स में सतासी साल की की श्री सुंदत कुनाई जिन्हें सब लोग कुनाई के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उन्हीं के घर जवाहरलाल नेहरू एवेन्यू क्लियाफोन नंबर 1 फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM मार्केट रोड मोताईलोंग में 66 साल की श्रीमती इंदिरा पम्मा पैदाइशी नाम बिकारी और जिन्हें सब लोग इंदिरा के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनके पति श्री रविनाथ पम्मा के घर मार्केट रोड मोताईलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खेवक्या की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM कारोलिन रोड वैली दे प्रेत में 88 साल की श्रीमती सावित्री कुनाई पैदाशी नाम पलवान और जिन्हें सब लोग कुमारी के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनके बेटे श्री सूरज कुनाई के घर कारोलिन रोड वैली दे प्रेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM रॉयल रोड बुबासे में 75 साल के डॉक्टर विनोद बालगोबिन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के चार बजे लाशापेल ऑनदोद एलियनसॉन्स रॉयल रोड बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लेविय की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 4 इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Chillax with Radio Masti.
2: Your number one Bollywood radio station. Welcome to RM2.
1: Radio Masti.
3: North, South.
1: 103.5.
3: East, West.
1: 96.4.
3: Center.
1: 99.4.
2: RM2. Radio Masti.
1: Radio Masti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
4: Good morning. Subah ke 7 baje hai.
1: Chillax with Radio Masti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. 5 बजे से चिलैक्स शो जारी है नमनी के साथ ऑन आरएम जो रेडियो मस्ती है. नबी के लिए आपके नाम है एक सवाल. क्या आप जानते हैं इंसान का दिमाग सुबह उठने के लगभग 2 घंटे बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. इसलिए अगर कोई भी इम्पोर्टेंट काम है उसे दिन की शुरुआत में ही कर देनी चाहिए. और हाँ, संडे का मतलब सिर्फ आराम नहीं है, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना भी है. सेल्फ केयर कीजिए. और हाँ, बताना तो मैं भूल गई कि थोड़ी ही देर में आपके लिए गेम है जहाँ पर आप जीत सकते हो 500 रुपी का वाउचर ऑफर टू यू बाय विनर्स. तो यहीं पर जुड़े रहना हमारे साथ, क्योंकि क्वेश्चन मैं कभी भी पूछ सकती हूँ.
0: With Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Lunch with Radio Musty.
1: And yes, it's your Chillax show. And अभी के लिए for you है एक मौका 500 रुपए का वाउचर जीतने का. And सवाल है कि आज से यानी कि आज 26th जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक what is the normal price and promotional price of winners? Chicken Franks 340 grams का बताना है आपको. Normal and promotional price of the Chicken Franks of winners 54991294 पर. चलिए let's know your answers.
2: RM2
3: Radio Musty.
4: Allez là, VHS spé débord coup de métrique. Depuis 17 jusqu'à 31 juillet, Vin profite bal méga promo, l'ON grand sélection produit pour ou la case. Jusqu'à 50% discount, l'eau sanitaire, robinetterie, lavabo et collage, prix là, flash net, promo là, extra. Métrique, une enseigne du groupe KRMJ.
2: RM2
3: Radio Musty.

0: And yes, the game ongoing है. आपको बताना था promotional है. And normal price of winners के chicken franks का. And normal price है वैसे 54 rupees था. और promotional price 29.95 rupees है. क्या बात है. इतना बड़ा promo चल रहा है at winners. Profit ही profit होगा अगर आप वहाँ पर अपनी shopping करें monthly का. And अच्छा winner तो हमने we found our winner and आप है. ऐसा विनर हमारी बन चुकी है माला जी. कंग्रेचुलेशंस टू यू. आपने जीता है 500 रुपए का वाउचर. एंड वाउचर आप को पोस्टेड किया जाएगा. एंड थैंक यू हमारे साथ खेलने के लिए. एंड अगर आप जीत नहीं पाए नो वरीज जी, क्योंकि दिन भर आपके लिए लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस अवेट कर रहा है. आप बस कनेक्टेड रहना आरएमजू रेडियो मस्ती के साथ में ही. एंड एंजॉय कीजिए अपने इस ब्यूटीफुल संडे को.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.
3: Koi jo mila tu mujhe aisa lagta

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: Good morning. अभी के लिए चलिए सुनते हैं latest sports updates आपसे विकास से. Good morning.
4: Good morning, Nilmani, and a very good morning to all sports fans. Road to Glasgow Commonwealth Games 2026. Mauritius का तैराक Bradley Vincent final में पहुंच नहीं पाया. Glasgow के 50 मीटर freestyle के सेमीफाइनल में कल रात वो केवल छठा स्थान ले पाया, 22 सेकंड 68 में, सो फाइनल में जा नहीं पाया. अब आज इन्हीं राष्ट्रमंडल खेलों में दिन के 1:30 बजे से अलिशा कोक्शुन और हम ली यिंगपिन हीट्स में, स्विमिंग के हीट्स में भाग लेंगे. बॉक्सिंग में भी आज हमारे तीन मुक्केबाज

रिंग पे उतर रहे हैं। तो वेट लिफ्टिंग के हमारे प्रतिनिधि मंगलवार से प्रतियोगिता में उतर रहे हैं। लड़कों में दिनेश पांडू और लड़कियों में केची लॉन्ग मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करेंगे। पदक तालिका मेडल टेबल में बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 12 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इंग्लैंड के पास हैं 3 गोल्ड मेडल्स, नाइजीरिया के पास भी 3 स्वर्ण पदक। मेजबान देश स्कॉटलैंड ने अब तक 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, दक्षिण अफ्रीका 2 और भारतीय टीम ने अब तक 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कल रात तक 1 गोल्ड मेडल शॉटपुट में मिलने वाला था, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंजोनी इराउला मेक्स विनिंग स्टार्ट विद लिवरपूल। द रेड्स ने कल अपने पहले फ्रेंडली मैच में संडरलैंड को 4-2 से परास्त किया। फेडरिको कियेसा और डोमिनिक जोबोस्लाई ऑन टारगेट सीनियर खिलाड़ियों में, और जूनियर खिलाड़ियों में किरण मोरिसन ने एक सुंदर गोल स्कोर किया। लेविस कुमास का भी एक गोल रहा। सो लिवरपूल ये मैच जीत गया 4-2 से। कप्तान बना जो गोमेज फिर घायल हो गया। अब लिवरपूल का अगला मैच 30 जुलाई की रात रेक्सहम के विरुद्ध, फिर 2 अगस्त को लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ एक मैच होगा, 9 अगस्त की रात लिवरपूल वर्सेस मोनाको, और 16 अगस्त को एनफील्ड में लिवरपूल खेलेगा कुमो के विरुद्ध। उसके बाद 23 अगस्त से प्रीमियर लीग शुरू अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड। ट्रांसफर बाजार में वर्ल्ड कप के टॉप खिलाड़ी सोने के दाम बिकने लगे हैं। सबसे पहले केप वर्दे का हीरो 40-year-old गोलकीपर वोजिनिया चिल्ली क्लब कुलू कुलू में जा रहा है। उसे इनिशियली 6 महीने फिर 1 साल का कंट्रैक्ट दिया जा रहा है। उसको वोजिनिया को हार्दिक बधाई। 40 साल की आयु में भी वो टॉप फुटबॉल खेलने जा रहा है। ब्रूनो गिमारेज और आर्सेनल बहुत दूर नहीं है। ब्राजील और न्यूकासल यूनाइटेड का ये मिडफील्डर 85 मिलियन पाउंड में आर्सेनल में जाने की कगार पे है। बातचीत जारी है। टोटनहम हॉटस्पर का कोच रोबर्टो डिज़ेर्बी खुश नहीं है। स्वीडन का उसका मिडफील्डर लुकास बेगवेल 45 मिलियन पाउंड में नॉटिंगहम फॉरेस्ट में जा रहा है। एक पहला 38 मिलियन पाउंड का प्रस्ताव ठुकराने के बाद अब 45 मिलियन पाउंड के साथ नॉटिंगहम फॉरेस्ट आ रहा है। बता दें कि जब से रोबर्टो डिज़ेर्बी टोटनहम में आया है तब से उसने बहुत पैसे खर्च किए हैं। सैंड्रो टोनाली को न्यूकासल से 100 मिलियन पाउंड में हासिल किया। मैटियस फर्नांडेज 85 मिलियन पाउंड फ्रॉम वेस्टहम यूनाइटेड। डिफेंस को भी मजबूत किया बाय एडिंग यान पुल वैन हेक और एंडी रॉबर्टसन। फिर भी रोबर्टो डिज़ेर्बी खुश नहीं है। हियर वी गो। जापान का फॉरवर्ड डाइजन माइडा वर्ल्ड कप हीरो इप्स्विच टाउन में जा रहा है। इप्स्विच न्यूली प्रमोटेड प्रीमियर लीग टीम है। अपने सेल्टिक क्लब में 5 साल बिताने के बाद उसने 212 मैचों में 79 गोल स्कोर किए। 3 लीग टाइटल, 3 स्कॉटिश क्लब और 2 लीग कप। डाइजन माइडा इप्स्विच टाउन में, जो उसका सपना भी था प्रीमियर लीग में खेलने का और जो पूरा होने जा रहा है 28 साल की आयु में। क्रिसेंशो समरविल फ्रॉम वेस्टहम यूनाइटेड टू सऊदी लीग अल हिलाल 55 मिलियन पाउंड में। वर्ल्ड कप का ये हीरो भी चला गया अब सऊदी लीग अल हिलाल में 55 मिलियन पाउंड में। जहां तक रियल मैड्रिड का सवाल है तो एकदम एक्टिव सक्रिय हो गया है। यान जोमांडे अब पेरिस सेंट जर्मेन को भी छोड़कर लगता है रियल मैड्रिड में जा रहा है। ही इज ओपन टू जॉइन रियल मैड्रिड। 100 मिलियन यूरो की बात हो रही है। यान जोमांडे लिवरपूल की राजाओं में भी था एक समय, फिर पेरिस सेंट जर्मेन और अब रियल मैड्रिड उसके बहुत ही करीब है। वैसे रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी के प्लेमेकर रोड्री को भी पाना चाहता है। हालांकि नए कोच एंजो मारेस्का ने बता दिया कि रोड्री बिकाऊ नहीं है और वो कल सोमवार को एक सर्जरी करने जा रहा है। फिर भी रोड्री अभी भी रियल मैड्रिड के राडार में है। और आरबी लाइप्ज़िग ने यान जोमांडे के बारे में बता दिया है कि 100 मिलियन पाउंड से कम में कोई भी सौदा तय नहीं होगा। क्रिस्टल पैलेस का सेंटर बैक मैक्सेंस लाक्रोआ चेल्सी में जा रहा है 52 मिलियन पाउंड में। आफ्टर साइनिंग मोगन रोजर्स फॉर 117 मिलियन पाउंड में चेल्सी में पैसों की खन खन छन छन जारी है। रूलियन अल्वारेज नॉट गोइंग टू एफसी बार्सिलोना, ऐसा एटलेटिको मैड्रिड के सीईओ गिल ने बताया। बार्सिलोना ने उसको पाने के लिए
हर संभव

0: कोशिश की, लेकिन कल ही उसके चेयरमैन ने बताया कि अल्वारेज जो सेंटर फॉरवर्ड है उसका सही जगह, उसकी सही जगह एथलेटिको मैड्रिड में है। और मैनेजर की बात करें तो पेप गार्डियोला ने इटालियन फुटबॉल का हेड कोच बनने को अस्वीकार कर दिया है, साथ ही कार्लो एंसेलोटी ने भी मना कर दिया। तो अब एंड्रिया पियोलो बनने जा रहा है इटली का नया हेड कोच 2030 वर्ल्ड कप के लिए। उसको अपनी टीम, अपने देश इटली को क्वालिफाइड करना होगा। फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के बेल्जियन ग्रांड प्री रेस में आज लैंडो नोरिस पोल पोजीशन से रेस शुरू करेगा। कल के आखिरी क्वालिफाइंग रेस में उसने ऐन मौके पे लेविस हैमिल्टन को पार किया। उल्लेखनीय है कि जनरल स्टैंडिंग में किमी एंटोनेली पहले स्थान पर हैं 204 अंकों के साथ। लेविस हैमिल्टन उससे केवल 45 अंक पीछे हैं दूसरे स्थान पर 159 पॉइंट्स। तो जॉर्ज रसेल 4 अंक पीछे हैं, अभी 9 अंक पीछे हैं और वो तीसरे स्थान पर हैं। साइकिलिंग में तादेज पोगाचा एक रैकड 5वीं जीत हासिल कर आज शॉ एलिजे में टूर डी फ्रांस जीतने की कगार पे है। वो फिलहाल 6 मिनट 26 सेकंड आगे हैं, जो काफ़ी दूर है, और यानी उसे बस क्रैश होने से बचना है। क्रिकेट में टीम इंडिया 90 रनों से अपना मैच जीत गई जिम्बाब्वे के विरुद्ध, यानी 2 मैचों में 2 विक्ट्रीज, पहले में 7 विकेट से, दूसरे में 90 रनों से। वैभव सूर्यवंशी यदि केवल 20 रन बना पाया तो ईशान किशन ने पारी को संभालते हुए 81 रन बनाए और तिलक वर्मा ने 60 रन दागे। अब 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ एक नई सीरीज शुरू, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। क्षेत्रीय स्तर पर रोशनुआ में दुदला बीमा सुवेनिया कप के अंतर्गत आज शाम 3:30 रोशनुआ विलेज काउंसिल फुटबॉल मैदान पे एक पहला मैच खेला जाएगा। 3:30 बेजिटोबो फुटबॉल क्लब का मुकाबला एस्टन विला पेची गाफवे से है। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Jumbo, Quality Déco, fin lance extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds par 100 roupies. Des pieds par 4 pieds par 295 roupies.

और इसी खूबसूरत गाने के साथ आज के इस चिलैक्स शो से मैंने मनी लेती हूँ इजाजत। मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए, थोड़ा आराम कीजिए और याद रखिए कि संडे सिर्फ वीकेंड का आखिरी दिन नहीं बल्कि नए हफ्ते की तैयारी का पहला दिन भी है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मिलते हैं फिर से कल एक नई सुबह के साथ। हैव अ वंडरफुल संडे।

ई बखत फजर के 8 बजल बा सब कोई के नमस्ते और रू आदाब फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा प्रधानमंत्री दफ्तर में चीफ ऑफ स्टाफ और डॉक्टर नवीन राम गुलाम के सलाहकार राकेश बकोरी कल सामदी रात के शिकायत दर्ज करावे खातिर सीसीआईडी पहुंचलन सोशल मीडिया पर ही पब्लिक इंटरेस्ट नाम होला एगो व्हाट्सएप ग्रुप के कोनो तथा कथित स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था ई में ई दिखावे के कोशिश करल गल बाते कि ऊ MMJ मामला में FCC के एगो अधिकारी के निर्देश देवता इस मामला में MSM पार्टी के कई गो पूर्व मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ भी शामिल बा उन लोग से पूछताछ हो या फिर होवे के चाहिए तो ऐसा संदेश में अपन नाम और फोन नंबर के लॉक के राकेश बकोरी बहुत ही दुखी बाते उ एकरा एगो गलत इरादा से करल गल हरकत बतैलन और इ पर पूरी जाँच करे के मांग करलन पॉल बेरांजे काल सामदी के सरकार के खिलाफ करा रुख अपनैलन FMP यानी कि फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के सेंट्रल कमेटी के बाद पॉल बेरांजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करलन जेकर संबंध आवत मंगर माने 28 जुलाई के राष्ट्रीय सभा में दुगो बृहद विधेयक माने फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलानियस प्रोविजंस बिल पॉल बेरांजे इस बात पर करी नाराजगी जतैलन कि ये दस्तावेज सांसद के कैसे भेजल गल घर के बिजली बिल के कमती करे के और देश में स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ावा देवे के उद्देश्य से काल सामदी के

0: क्यूपिप शहर में हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम की शुरुआत होल। ये परियोजना उ परिवार लोगन खातिर रह जेकर मासिक आय 150,000 रुपया से कमती है। एकर तहत 3,600 परिवार लोगन के अपन घर के छत पर ही सोलर पैनल लगावे खातिर 75,000 रुपया ले सब्सिडी मिली। इस सुख से मॉरिशस के अमेरिका के नवा टैरिफ व्यवस्था से बहरा रखल गल। एकर मतलब यह कि मॉरिशस के निर्यातक के अगुआ के तहत अमेरिकी बाजार में मिले होला छूट और लाभ आगे से मिलते रही। सूत और लुगा बनाए होला कंपनी वेंसम लिमिटेड के निर्देशक अविनाश गुबर्धन के अनुसार ई निर्यात सेक्टर खातिर एगो बहुते अच्छी खबर बाती। ई सफलता सरकार के बगल से मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के संगे मिलके करल गल मेहनत के नतीजा है। ते दूसर देश में रूस के कब्जा होला यूक्रेन ज़ापोरिज़िया इलाके पर ही कल शाम दिखे यूक्रेनी ड्रोन हमला में 11 आदमी के मौत हो गल और 14 जना के कस के घाव लग गल। मरे होला में 4 लड़का भी शामिल बाते। ई हमला हौजा के पर्यटक स्थल पर होल जहां पर मनोरंजन खातिर आ रहलन जा। यूक्रेनी सेना ई हमला के कोनो कारण नहीं बतैलन। ते एकरे संगे हमनी के भोजपुरी समाचार समाभल। ध्यान देवे खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
4: It's the weather broadcast with winners.
5: On est tous winners.
0: आम हालत उत्तर की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी, खासकर उत्तर पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर। शाम तथा आज रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा उत्तर की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:42 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:50 पर।
6: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
7: La foire Bilbil Kaji retourne cut winners.
8: Bilbil Kaji de retour cut winners. Du 24 juillet au 6 août uniquement. La brique d'un litre de lait UHT Arla à 58,95 et à l'achat d'un fer à repasser Philips Steam Iron 2 à 1590 roupies, recevez un fan heat à Midea de 2000 watts d'une valeur de 1490 roupies en cadeau. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
9: On est tous winners.

Well, वैसे यहाँ पर लैला नहीं बल्कि हंसनी आ गई है आप लोगों का साथ निभाने के लिए right here on Radio Masti. सभी का वार्म वेलकम. 8:12 हो चला है. स्पेशल थैंक यू टू यू लवली नीलमणि. शी वाज हियर एक्चुअली हमको देने के लिए द वेक अप कॉल. दैट वाज चिलैक्स. दैट वाज राइज एंड शाइन वाला शो. और इसी के साथ यहाँ पे कुहार हमको मिला है. वी गॉट द एनर्जी टू स्टार्ट आज का टाइमलेस सतर का. कुछ एवरग्रीन सुवेनियर्स को हम लेकर आएंगे ताकि जो शुरुआत आपने की है हमारे साथ ऑन रेडियो वो बस एकदम मस्त बन के रह जाए पूरा का पूरा दिन. इट्स अ वीकेंड राइट. इट्स अ संडे की शुरुआत. और सबसे पहले हम रब का शुक्राना कर लेते हैं. उन्हीं की मेहरबानी से ना और एक नया दिन शुरू हो गया है. और खुश रहने का एक सबसे आसान तरीका बता दूं. अच्छा बता देती हूँ. जो है उसके लिए आभारी रहे क्योंकि हर एक नया दिन ना एक खाली किताब की तरह है. इसे अपने अच्छे कदमों से खूबसूरत बना लीजिए. एक नया चैप्टर शुरू हो गया है और ये आपको बस देने वाली है लट्स ऑफ खुशियाँ लट्स ऑफ प्यार. ये जो दिन आया है और हम तो दिल से यही प्रार्थनाएं करेंगे कि आपकी हर सुबह को शांति प्रेम और ढेरों सारी खुशियां से भर दे. तो यहाँ पर शुरुआत तो हो गई है. रेडी हो कि सब ठीक है आपकी तबीयत ठीक है और अगर नहीं सो ठीक है मेडिसिन और बस इलाज के साथ साथ एक स्पेशल म्यूजिकल डोज भी होने वाला है अंटिल 11 एम. दैट विल बी टाइम लिस्टर का. और आज तो है 26th of July राइट संडे का दिन. एंड वैसे साल भर में एक ही दिन आता है ना जो सबसे खास दिन होता है हमारा दिन होता है यानी कि जन्मदिन होता है. और अगर ये है आज सो डोंट मिस द चांस टू विश समवन रियली वेरी डियर. ये जो आपका विश है ना किसी का बर्थडे को बदल सकता है यकीन मानिए एक छोटा सा विश. सो यहाँ पे टू मेक इट पॉसिबल ये जो कनेक्शन है बन गया है. ये जो कनेक्शन है हो गया है आप लोगों के साथ विद रेडियो मस्ती. और इंतजार तो रहेगा 5499-1294 पर आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस के लिए. सो जहाँ पर भी साथ जारी है इट्स अ प्लेजर टू वेलकम एवरीवन. और वैसे कल जो लोग गए थे फॉर द कंसर्ट फॉर द स्पेक्टेकुलर कंसर्ट ऑफ अभिजीत दा दैट वाज पैसा वसूल कंसर्ट. दैट वाज सुपर से ऊपर सो मेनी लेवल अप. इतने सारे गाने वो गाए हमारे सभी फैन फॉलोअर्स के लिए हमारे सभी नाइंटीज के चाहने वालों के लिए. एंड दैट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग. और ये जो खास गाना है ना लवली डुएट. मौसम काफी रोमांटिक है ना तो धूप ना तो बारिश. और इसी में अभिजीत दा की ये मदमस्त आवाज और क्या चाहिए.

0: RM2 रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: संडे की मस्ती बस छा गई है ऑन रेडियो मस्ती इटसेल्फ, जहां पर प्यार है, ये खुशियां है, ये जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है, ये जो माहौल छा गया है सुबह के वक्त पर, इट्स जस्ट ऑसम। एंजॉय टू द मैक्सिमम टाइम लेस्टर का ऑन रेडियो मस्ती, जहां पर हम लेकर आ रहे हैं ओनली द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स। यहाँ पर है आपके साथ हंसनी और बिल्कुल हम साथ साथ चाय एंजॉय करने वाले हैं। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट, एंजॉय चाय, एंजॉय कॉफी एंड मेक इट मेमोरेबल संडे। प्यार भरे गानों के साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस ऑन 5499 1294।

0: तड़का RM2
1: ये रास्ते हैं प्यार के यहाँ पे जीवन का ये रास्ता ही है जहाँ पर फूल होते हैं कांटे होते हैं लेकिन इट्स लाइक अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चलेंगे कांटे मिलेंगे उनको हटाएंगे फिर से चलेंगे और क्या यहाँ पे चलते रहेंगे मुसाफिर जो हम हैं और सुकून को हम ढूंढ लेते हैं हर वक्त ना लेकिन हम तो कहेंगे सुकून किसी जगह में नहीं बल्कि अपने मन की शांति से मिलता है जहाँ पर उम्मीद कम और स्वीकार ज़्यादा हो वहीं पर असली सुकून मिलता है ट्राई इट और यहाँ पे रिश्ते वहीं खूबसूरत होते हैं जहाँ पर ट्रस्ट हो और ट्रस्ट में ही सुकून बसता है सो अगर ट्रस्ट करेंगे तो उसी में बहुत बड़ा सुकून आपको मिलेगा राइट सो आज आपका कीवर्ड आपका पासवर्ड रहेगा ट्रस्ट एंड लव यहाँ पे प्यार के साथ ही वी आर कनेक्टिंग यू विद द बेस्ट ऑफ एवरग्रीन टाइमलेस तड़का कलेक्शन यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों के लिए प्यार के साथ बनाया गया है आई रियली होप कि आप दूर से ही लेकिन पास तो रहते हो ऑलवेज एंड फॉरएवर ये ऐसा बंधन है ये ऐसा कनेक्शन है सो यहाँ पे दूर होते हुए भी यू कैन फील द लव जो यहाँ पे वेटर मस्टी लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर एवरीवन जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है और एवरग्रीन सेवन ईयर्स के साथ बिल्कुल आप भी एवरग्रीन मूड बना रहे हो एवरग्रीन सेवन ईयर्स के साथ यकीनन प्यार के गानों के साथ जो है यादें भी आ रही है किसी की याद या फिर किसी की बातें तो चलता रहता है म्यूजिक का कमाल ऑलवेज और नरेटर मस्ती सो वही है आपके साथ हंसनी एंड 11 एम तक यहाँ पे मुलाकात जारी है तो यहाँ पर जीवन को ये जिंदगी जो हमको मिली है लेट्स लिव इट जिन घड़ियों में हम हंसेंगे आज खुश रहेंगे वो शेयर सम हैप्पी फनी टाइम हंसेंगे यहाँ पर मे बी जो पल आपने मिस कर लिया है यू आर कंप्लीट हफ्ते भर के लिए आप बिजी रहते हो आज वीकेंड में यू आर कंप्लीट द टाइम परिवारों के साथ अपने प्यार के साथ सो सिलावी यहाँ पर और इसी जीवन को इसी जिंदगी को मत मस्त बनाने के लिए वी आर हियर आपके साथ लेट्स कैरी ऑन द शो
0: Timeless Tadka
2: RM2
0: Timeless Tadka
3: La la la la la la la la la la
2: RM2
0: Radio Masti
2: Feel

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: सेलेबी समेम सा बिग बी के साथ क्या नाचा यहाँ पर। वैसे ये तो अच्छी बात हो गई है, कल रात काफ़ी कुछ खा लिया था, एक्सेस कैलोरीज इन हो गए, सो कुछ डांस ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है सुबह के वक्त। अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट दैट विल बी मैसेजेस के साथ जहाँ पर आप आए हो। एंड जब भी यहाँ पर आप आते हो तो जो हमारी खुशी है वो डबल हो जाती है। थैंकिंग यू सो मच फॉर ऑल योर लव। तो सुबह के वक्त पर चलेंगे इन हेवन। आप सोचेंगे कि कहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर है हेवन ना, लेकिन बुडापेस्ट की बात करें तो दैट्स हेवन। गुड मॉर्निंग सनशाइन हंसनी हुआ, दैट्स लवली। थैंक यू यहाँ पर फॉर द लव। वी हैव गॉट नेक्स्ट गाना फॉर पति मिटको के लिए, फॉर डॉटर रोशनी, फॉर सिस्टर स्वस्ति, बबीता बेबी, वी हैव पूनम किरण।

0: Vandana, thank you so much, my dear, for sending lots of love to us, Roshni ji. आपका नाम ही रोशनी है, उजाला आप लेकर आती हो. And you are actually the sunshine यहाँ पर on Radio Masti. Thank you very, very much for bringing the love all the way from Budapest to Mauritius. यहाँ पे प्यार है आपके लिए. Next गाना जाएगा for Anishav के लिए and Jinesha. आज शादी है उन दोनों की. Great congratulations to Anishav and Jinesha for their big day. From Papa Dhiraj, Mama Surekha, Dineha, Jijaji है और सभी Temba परिवार आए है from Mota Blanche to convey the love to the sweet couple जो नई जोड़ी आज साथ होने वाली है. सात जन्म की कस्में खाई जाएंगी और ये जो बंधन है, ये जो प्यार है, वो बस और भी स्ट्रांग रहे उम्र भर के लिए. यही हमारे गुड विशेस है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू टू, जस्वी, रेशमा, मामा दीपा, नानी, नाना, पापा एंड पापा बॉबी, विहा, सचिन एंड लवेश, एवरीवन इज जस्ट स्ट्रांगली कनेक्टेड. थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग, यहाँ पर मैसेज आया है फॉर बुबू. रानी है जो बोना कैसे है, लॉट्स ऑफ लव कमिंग फ्रॉम हबी रोशन. आई वॉन्ट जस्ट टू टेल हर कि प्यार है, बहुत बहुत प्यार है उनके लिए. क्या बात है, प्यार के साथ ही किसी को आप याद करना चाहेंगे. मेबी समवन स्पेशल, कई दिनों से आपने बोला नहीं, तो आज कह लीजिए जो दिल कहना चाहता है. यहाँ पर प्यार के साथ आइए ऑन अ 549-1294 एंड मेक इट अ ब्यूटिफुल स्टार्ट ऑफ द संडे. वीकेंड वाला शो है, इट्स अ टाइमलेस तरह का. यहाँ पे आज हंसनी आपके साथ, विशिंग ऑल ऑफ यू अ हैप्पी मॉर्निंग.
1: Timeless Tarka.
2: RM2.
1: Timeless Tarka.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
3: Good morning, everyone. It took you a time. I subha ke theek 9 baje hain. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के साथ आपको नमस्कार अभी
4: नमस्कार हंसिनी श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ प्रधानमंत्री दफ्तर में चीफ ऑफ स्टाफ और डॉक्टर नवीन राम गुलाम के सलाहकार राकेश बकोगी कल रात शिकायत दर्ज कराने सीसीआईडी पहुंचे सोशल मीडिया पर पब्लिक इंटरेस्ट नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ तथाकथित स्क्रीनशॉट वायरल हो रही है इन स्क्रीनशॉट्स में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने एमएमजी मामले में एफसीसी के एक अधिकारी को निर्देश दिए थे इस मामले में एमएसएम के कई पूर्व मंत्रियों जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ भी शामिल हैं से पूछताछ हुई या होने वाली है इन संदेशों में अपना नाम और फोन नंबर देखकर राकेश बकोगी काफी दुखी है उन्होंने इसे एक गलत इरादे से की गई हरकत बताया और अधिकारियों से मांग की है कि इन पोस्ट के पीछे किसका हाथ है इसकी पूरी जांच की जाए घरों का बिजली बिल कम करना और देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना इसी उद्देश्य से शनिवार को क्यूपिप में हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम की आधिकारिक शुरुआत की गई ये परियोजना उन परिवारों के लिए है जिनकी मासिक आय 1,50,000 रुपए से कम है इसके तहत 3,600 परिवारों को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन ने कहा कि इस पहल से कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में कमी आएगी और देश ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनेगा सबसे पहले सीईबी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके बाद सब्सिडी प्राप्त करने के लिए डीबीएम में आगे की कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी

0: भी। बजट 2026-2027 के पेश होने के एक महीने से भी अधिक समय बाद इस मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल 2026 पेश किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए 25 कानूनों में बदलाव करने का प्रस्ताव है ताकि टैक्स व्यवस्था, सरकारी अर्थव्यवस्था और साथ ही रिटायरमेंट पेंशन सुधार से जुड़ी बजटीय घोषणाओं को लागू किया जा सके। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने शनिवार को कहा कि मैड्रिड के पश्चिम में लगी आग में दमकल कर्मी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज हवाओं की आशंका के चलते स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। सरकार ने बताया कि सूखे इलाकों में लगी आग की वजह से 70,000 लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। अधिकारियों ने इसे इस इलाके में अब तक की सबसे भयानक आग बताया। उधर यमन से सऊदी अरब पर मिसाइल हमले हुए। इन हमलों में मिसाइल और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब के जिजान औद्योगिक शहर में धमाकों की आवाज सुनी गई। जिजान की एक अहम सऊदी सुविधा को मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: मारिजानी रोजबेल में 69 साल के 69 years old के श्री रूप नारायण हृदय जिन्हें सब लोग सूरज के नाम से भी जानते थे और जो फिनिक्स बेवरेजेस के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर मारिजानी रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारिजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 11 AM, नंबर 15 एवेन्यू पुआव्र 4 बोन में, नंबर 15 एवेन्यू पुआव्र 4 बोन में 63 साल की 63 years old के श्री विजय दत्त कन्हैया जिन्हें सब लोग विजय के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे श्री अविनाश कन्हैया के घर नंबर 15 एवेन्यू पुआव्र 4 बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा 4 बोन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन दिस आफ्टरनून एट 1:30 जेबेर रोड रोजबेल में 82 साल के 82 years old के जनाब अजीज मुली जिन्हें सब लोग आहून के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दोपहर के दो बजे उनके बेटे जनाब असन मुली के मकान जेबेर रोड रोजबेल से निकालकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

0: to Radio Musti.
1: Avec les Wonderful Days de Chantefrais, vous n'allez pas en croire vos yeux. Du 25 au 29 juillet, profitez de notre combo pack de 800 grammes avec des morceaux de blanc, de hanche, d'aile et de pilon de poulet pour seulement 154 roupies. C'est ça les Wonderful Days de Chantefrais.
2: Eh oui, Zisco de Chantefrais, Kina Chantefrais.
3: Un produit made in Maurice.
0: RM2
4: Radio Musty. RM2
5: Welcome again on Radio Musti and Rise and Shine beautifully with Timeless Tarika. यहाँ पे वीकेंड को सजाती हुई आपके साथ और जो हंसनी सभी का वेलकम वंस अगेन. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग. इट्स संडे टाइम और वैसे वीकेंड को सेलिब्रेट करने के लिए हमें तो चाहिए वो बहाना ढूंढ लेते हैं जब भी आपका साथ मिल जाता है. यहाँ पर वी आर ऑलरेडी इन द सेकंड आवर गाइस एंड बस खुशी के साथ विद लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स पॉजिटिविटी यहाँ पे दिन की शुरुआत हमने की है. और ऑलरेडी वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो. टाइमलेस तड़का हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ओनली द बेस्ट ऑफ एवरग्रीन सुवेनियर्स. और प्यारे के साथ ही यहाँ पर दिल से हमने सेलेक्ट किया है हर एक गानों को जो हम चला रहे हैं आपके लिए. यही आशा है कि आप पसंद कर रहे हो, गुनगुना रहे हो, बीइंग हैप्पी. और ये जो हैप्पी फील है वो कीप इट टिल द एंड ऑफ द शो. और यहाँ पर हम तो मानते हैं कि जो खुशियाँ होती है ना, हैप्पीनेस इज नॉट फाउंड इन परफेक्शन, इट इज़ फाउंड इन अप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव. जो भी आपके पास है उसी में आप खुश रहिए. एवरी न्यू डे इज अनदर चांस टू स्माइल, ग्रो एंड शाइन. राज फॉर अ हैप्पी लाइफ, आपको पता है वो राज इज टू एंजॉय जो छोटे छोटे लम्हे होते हैं ना, उससे में खुशियाँ ढूंढ लीजिए. विल बी अ हैप्पी पर्सन. तो यहाँ पे प्यार के साथ वी आर कनेक्टिंग यू विद गुड वाइब्स ऑल अराउंड मॉरिशस. इट्स अ बिग बिग हेलो टू एवरीवन. विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग. और साथ में आज तो है संडे, आज तो है 26 जुलाई. कहाँ है हमारे बर्थडे बॉयज, बर्थडे गर्ल्स, उठ गए हैं. यू गॉट द वेकअप कॉल. अच्छा, दैट्स वेरी नाइस. अभी टाइम फॉर मी टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे. अगर ना मिलेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. क्या कहें यहाँ पर, अगर इस बात को मैं इस फीलिंग्स को आप बयां करना चाहेंगे, विल बी वेटिंग, आपका इंतजार करना चाहेंगे ऑन 5491294. तो यहाँ पर प्यार के साथ ही कीप लिसनिंग और हैप्पी बर्थडे गाने का टाइम तो आ ही गया है. यहाँ पे चलिए गाते हैं आपके साथ हैप्पी बर्थडे.

नमस्ते पर इट्स टाइमलेस तड़का यहां पे ब्रिंगिंग सम मोला पॉजिटिविटी बहुत सारा प्यार हम लेकर आ रहे हैं थैंक्स टू द ब्यूटीफुल एवरग्रीन सेवेनियर्स यहां पर है हंसनी जो आपके साथ है बिल्कुल एकदम मस्त जबरदस्त गानों के साथ हम लेकर आए हैं आज का टाइमलेस तड़का 9:35 AM in Mauritius. Hello guys, welcome in the show. यहाँ पे wishing you all a very very good morning. कैसे हैं हमारे friends? Really hope कि सब कुछ ठीक है, अच्छे से शुरुआत तो हो गई है. और बेशक enjoying a perfect weekend. परिवार साथ है, having breakfast में भी अभी. आज late wake up call पा लिया है. कोई बात नहीं, चलता है. हफ्ते भर के लिए इट्स लाइक अर्ली राइजर लेकिन आज है थोड़ा सा आराम लाइक अ बिट मोर फ्री. ये तो बस चलता है फॉर अ वीकेंड, इसमें कोई पाबंदी नहीं है. यहाँ पर हैविंग चाय, हैविंग नाइस फैमिली टाइम, सो एंजॉय करिए. हंसने बिल्कुल आ रही है आपके यहाँ टू मेक इट फन, टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल. हेलो टू यनीश, कैसे हो? सो नाइस टू हैव योर मैसेज माय डियर. इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू ऑन रेडियो मस्ती. आपके लिए ज़रूर एक खास गाना तो बनता है. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर अप्रिसिएशन एज ऑलवेज. तो आपके लिए ज़रूर एक स्पेशल गाना फॉर यू एंड सभी अंगद सामी फैमिलीज के लिए भी. हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड या स्टे वेल कनेक्टेड विद अस. हेलो टू ऑल द रेडियो मस्ती टीम, विश यू अ वार्म मॉर्निंग. यहाँ पे किशन रघुनाथ आए हैं फ्रॉम सुरीनाम. हेलो जी, आपका वार्म वेलकम है. नेक्स्ट गाना फॉर वाइफ माला के लिए, फॉर टू डॉटर्स जिया एंड रिया. और साथ में रघुनाथ परिवार भी शामिल हो गई है टू एंजॉय द शो. तो चलिए सभी का वेलकम. होप यू हैविंग अ ग्रेट मॉर्निंग रेडियो मस्ती टीम. हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे सब मस्त जबरदस्त. विशिंग मामा रेशमी एंड पापा संजीव हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी ऑलरेडी 28 ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस. ये जो बंधन है वो बहुत ही मजबूत है. और यहाँ पे दिल से हम यही प्रार्थनाएं करेंगे कि ये जो साथ है वो बस बना रहे. ऑलवेज टुगेदर वी कंटिन्यू टू फ्लरिश विद मोर लव एंड हैप्पीनेस. खुशियाँ बस उनके लिए रहे. बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम मामा सरदा, फ्रॉम माय डॉटर कीर्ति एंड किमी फ्रॉम मोंगू एंड फ्रॉम ऑल द फैमिलीज जो यहाँ पर कनेक्टेड है जस्ट टू एंजॉय द एवरग्रीन सेवेनियर्स. हाई डियर प्रणाम, प्रणाम टू यू टू. विशिंग गुड वीकेंड टू एवरीवन. नेक्स्ट गाना फॉर ग्रैंडसन क्रिशय के लिए, क्रिशय शंभू सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, सेलिब्रेटिंग हिज थर्ड बर्थडे. हे क्रिशय, छोटे से एंजल बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू. लट्स ऑफ गुड विशेज एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम मामा कोमल, फ्रॉम डैड कुशल, भाई कियंश, दादी माँ है वीना शंभू, फ्रॉम नाना नानी और सभी शंभू परिवार की तरफ से हम दुआएं हैं टू विश यू हैप्पी वाला बर्थडे.

0: कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को
1: बाजीगर कहते हैं जी हाँ ये तो हमें पता है सबको पता है वी आर द फैंस ऑफ वैसा रोकिना जितने भी फैन फॉलोअर्स इस समय जुड़े हुए हैं वी आर हैविंग ऑल इन द बेस्ट ऑफ गाने जो लेकर आ रहे हैं आज टाइमलेस स्टार का राइट है ऑन रेट मस्ती थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द कलेक्शन और यहाँ पर इशारा है कि कुछ ही पल में ना हम बढ़ेंगे ठीक 10 बजे के समाचारों की ओर और इसके बाद जरूर मुलाकात को हम जारी रखेंगे इन द थर्ड आवर ऑफ द शो सो जहाँ पर भी साथ जारी है ऐसे ही सुंदर है ये हम सुनी है आपके साथ विल मेक इट Wonderful weekend.

0: to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good morning, time check. Din ke 10 baje hain. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के साथ, आपको नमस्कार। अभी
6: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कल जारी की गई एक विज्ञप्ति में नेशनल लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी ट्रेन चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों पर जवाब दिया है। NLTA ने याद दिलाया है कि साल 2005 के बाद से मॉरिशस में टैक्सी के किराए की कोई आधिकारिक दर तय नहीं है। इसलिए उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सफर शुरू करने से पहले ही ड्राइवर से किराया तय कर लें। इसके साथ ही NLTA ने सभी टैक्सी चालकों से अपील की है कि वे आम जनता के हित में सही और उचित किराया ही लें। मॉरिशस में घर बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 23 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार निर्माण मूल्य सूचकांक यानी कि कंस्ट्रक्शन प्राइस इंडेक्स में एक साल में 6.1% की बढ़ोतरी हुई है। काउंसिल ऑफ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर्स के चेयरमैन देवेंद्र दालिया के अनुसार इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बाहर से मंगाए गए सामानों की कीमत, फ्रेट मैरिटाइम का महंगा होना और सीमेंट जैसी स्थानीय चीजों के दामों में उछाल आना। हालांकि इस महंगाई का असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ रहा है। बड़े निर्माण ठेकेदारों को कभी कभी उनके कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद एडजस्टमेंट क्लोज के जरिए सुरक्षा मिल जाती है, जबकि आम लोगों को बढ़ी हुई कीमतों और टैक्स का पूरा बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। पॉल बेरांजे ने कल सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस यानी कि FMP की सेंट्रल कमेटी की बैठक के बाद पॉल बेरांजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने इस मंगलवार यानी कि 28 जुलाई को राष्ट्रीय सभा में दो बृहद विधेयकों को एक साथ पेश करने की योजना का विरोध किया। ये दो विधेयक हैं फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल। दूसरे विधेयक के जरिए लगभग 58 कानूनों में बदलाव करने की तैयारी है। पॉल बेरांजे ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि ये दस्तावेज सांसदों को कैसे भेजे गए। उनका कहना है कि संसद सत्र से ठीक 3 दिन पहले आधी रात को इतने महत्वपूर्ण बिल भेजना बिल्कुल गलत है। इसी से भी किसी भी पक्ष को इन्हें पढ़ने और समझने का मौका नहीं मिलता है। शुक्रवार से मॉरिशस को अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि मॉरिशस के निर्यातकों को अगवा यानी कि अफ्रीकन

0: ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट के तहत अमेरिकी बाजार में मिलने वाली छूट और लाभ आगे भी मिलते रहेंगे। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया शहर क्षेत्र में शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन हमले में 11 लोग मारे गए हैं और 14 घायल हुए हैं। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। ये हमला उस इलाके के पर्यटक स्थल पर हुआ जहां पर लोग मनोरंजन के लिए आए थे। यूक्रेनी सेना ने इस हमले का कोई कारण नहीं बताया है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: मारी जानी रोजबेल में 69 साल के 69 years old के श्री रूप नारायण हृदय, जिन्हें सब लोग सूरज के नाम से भी जानते थे और जो फिनिक्स बेवरेजेस के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर मारीजानी रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे At 11 AM, Hamlet Road, Mont Saint-André Main, 78 साल की 78 years old की श्रीमती चुरामणि दिगम, पैदाशी नाम लक्ष्मा और जिन्हें सब लोग चुरामणि के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री राकेश दिगम के घर हैमलेट रोड मोसेलमो सैंत औंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसेलमो सैंत औंद्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: RM2 Radio Musti.
3: Timeless Tadka.
2: RM2
3: Timeless Tadka.

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: It's Timeless Tadka on Radio Masti, guys. It's a warm welcome. सभी का दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे. Sunday का ये जो दिन आया है, we are here to celebrate आपके साथ इन सभी खुशियों में शामिल होने के लिए, जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए. जिंदगी जो एक सफर है, मुस्कुराकर तय हम करेंगे साथ साथ. जहां पर उम्मीद है वहीं पर नई शुरुआत भी तो है. और जो प्यार है, जो पॉजिटिविटी है, विल कीप ऑन शेयरिंग अप टू द एंड. यहां पर थर्ड आवर शुरू अभी हो गया है. सो ये जो हमारा शो है, लेकर आ रही है द बेस्ट ऑफ एवरग्रीन सुवेनियर्स. कुछ यादगार एवरग्रीन सॉन्ग्स जिनको सुनते ही बस हम अपने कल की यादों में खो जाएंगे. विल ब्रिंग द यस्टरडेज की सुवेनियर्स. ये तो है कमाल ऑफ रेडियो मस्ती, जो हमेशा आपके साथ है, ऑलवेज एंड फॉरएवर. यहाँ पे हंसरी है जो साथ देने वाली है 11 बजे तक. कुछ कहना जो आप चाहेंगे सो मैसेजेस द्वारा, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपके दिल की बातें हैं ना, वो बिल्कुल आपको बस मौका दे रही है टू फ्री आउट योर फीलिंग्स. जो आज के विशेष है, आज शादी, सगाई, कोई भी खास ओकेजन, वी आर हियर टू सेलिब्रेट. हमें चाहिए वो एक बहाना धूम धड़ाका करने के लिए, हंगामा करने के लिए, एंड टू मेक सम फन. सो वेटिंग फॉर यू ऑन 5499-1294 फॉर योर मैसेजेस. और अभी शान की आवाज़ में एक स्पेशल गाना हो जाए. हाँ बिल्कुल हो जाए. और ये जो खास तराना है, हम डेडिकेट करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो इस समय ड्राइव कर रही हैं. प्लीज़ ड्राइव सेफली, केयरफुल ड्राइविंग ऑलवेज, एंड एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर ड्राइव.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
1: Timeless Tadka.
0: RM2
3: रेडियो मस्ती पर एक बार फिर से सभी का स्वागत. वार्म वेलकम एवरीवन इन टाइमलेस तड़का. अभी टाइम फॉर अ फैशन टिप. वैसे शादियों में जाने का सीजन है या फिर सगाई में जाना है और आपने सोचा है थोड़ा सा आज सिंपल लुक. मे बी आज आप सिलेक्ट करेंगे सलवार कमीज. सो ऑल माय लेडीज, एक छोटा सा फैशन टिप आपके लिए. जो सलवार कमीज आप चूज करेंगे आज, अपने बॉडी टाइप के अनुसार सलवार कमीज को चुने ताकि जो आपका लुक है ना वो कुछ और अट्रैक्टिंग लगे. ऐसे रंग पहने जो आपकी त्वचा के रंग को निखारे. सही रंग पूरे लुक को बेहतर बना देता है. सो इट डिपेंड्स यहाँ पे आपको कौन

0: सड़क पसंद है, लेकिन त्वचा के अनुसार अगर चुनेंगे तो आपके लिए बेहतरीन। सलवार कमीज के साथ दुपट्टे आएंगे, राइट। दुपट्टे को अलग अलग स्टाइल में ड्रेप करें, इससे एक ही ड्रेस हर बार नया लुक देती है। यानी कि अगर आदत है आपकी लाइक टू ड्रेप योर दुपट्टे कुछ ऐसे स्टाइल में आज ऑलवेज, लेकिन आज थोड़ा जो स्टाइल है बदल लीजिए, इससे आपका लुक थोड़ा सा अलग दिखेगा, अच्छा दिखेगा। और भारी कढ़ाई वाले जो सूट होती है ना, उसमें हल्की सी ज्वेलरी आप पहन लीजिए। एक सिंपल सूट के साथ स्मार्ट आपको ज्वेलरीज को सिलेक्ट करना है। यानी कि भारी अगर है सलवार कमीज तो एकदम हल्की वाले ज्वेलरी, और अगर हल्के वाले जो आपका सलवार कमीज है उसमें से थोड़ा सा भारी ज्वेलरी। इट हैज़ टू बी द कंट्रास्ट। और यहाँ पे फुटवेयर की बात करें तो फुटवेयर का सही चुनाव करें, ये आपके कंफर्ट पर डिपेंड करता है कि आपको हाई हील्स ज़्यादा पसंद है या फिर पाँव में काफ़ी पेन होता है इसकी वजह से, यू कॉन्ट वेयर द हाई हील्स। सो इसी के हिसाब से आप चूज़ करें डिपेंडिंग अपन योर कंफर्ट। लेकिन एक छोटा सा टिप, अगर आपको चुनना है आज अपने फुटवेयर को लेट्स से अनारकली के साथ हील्स और बिल्कुल उनके साथ जूती या फिर कोल्हापुरी चप्पल, ये शानदार लगती है, एकदम ट्रेडिशनल वाला लुक। सो ये थे छोटे से टिप्स जो बिल्कुल आपकी मदद करेंगे आज सजने धजने के लिए टू लुक मोर ग्लैमरस।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: टू रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378282। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.

0: Express तड़का
1: RM2
2: वेलकम अगेन इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रेट हिट्स यहाँ पे एवरग्रीन 7 years के साथ के बीइंग मैजिकल फॉर दिस वीकेंड अभी टाइम हो चला है फॉर सम मैसेजेस आज मम्मा बबीता रोजन का जन्मदिन है विशिंग बबीता जी हैप्पी बर्थडे ऑन हर स्पेशल ओकेजन विशेस कमिंग फ्रॉम बेटे आशीष वशीष और सभी रोजन परिवार की तरफ से गुड विशेस है हैव अ वंडरफुल टाइम और यहाँ पे किशन जी का साथ है आप तो हो फ्रॉम रिविया जुगान पर चलिए वहाँ पर चलेंगे टू वेलकम ऑल द परिवार और गाना है फॉर योर वाइफ आशा के लिए शी इज आल्सो सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू योर लवली पार्टनर यहाँ पे रोमांटिक गाना सुनना चाहेंगे उनके लिए आई वॉन्ट टू टेल हर शी इज ऑलवेज माई प्रेशियस ये हुई ना बात मेक इट अ मेमोरेबल जन्मदिन Hi, good morning to all Radio Masti team. Good morning to you too. यहाँ पर गाना है for Angel Vania के लिए. She is celebrating her first birthday. Oh, cutie pie. Happy birthday, baby. Lots of good wishes coming from Mama Nisha, from Risha, Papa Vijay, Neeraj, Nana Gyan, Nani Chand, Bhai Vyan, Didi Jamisha, Mahi और सभी Chataru and Santa का families wishing छोटी सी प्यारी सी गुड़िया Vania, happy birthday. Special wishes coming from Mommy Rasha ji petit rafray say is may connected head to Radio Masti thanking you so much Rasha ji for sending your love and blessings jadamdin ki baat kare to we are celebrating the birthday of Dinesh ji happy birthday to you kaise ho really hope you are take care enjoying a great shurwaat for the birthday hum to kahenge celebrate today cherish tomorrow may all your dreams be fulfilled और ये जो खुशियाँ हैं वो बस कायम रहे हमेशा आप खुश रहे स्वस्थ रहे एंड मुस्कुराते रहे हर पल आपके लिए लेकर आए ओनली लव एंड प्रॉस्पेरिटी मुस्कान आपकी पहचान बनी रहे खुशियाँ हमेशा आपके साथ रहे गॉड ब्लेस यू और ऊपर वाले की मेहरबानी से जो भी आपने चाहा है वो बस आपको मिल जाए गॉड ब्लेस यू विशेस कमिंग फ्रॉम योर वाइफी And from all your dear ones, chale yahan par gaane ka time and to wish you a very happy wala birthday.

0: Timeless Tadka.
1: RM2.
2: Definitely that was timeless, that was precious. प्यार किया है तो पूरे शिद्दत से आप उसी प्यार को निभाना है. That was specially for Babushona and Patty के लिए जो strongly connected है from Canada. So it's a pleasure to welcome you in Mauritius. हमेशा की तरह ये जो साथ है वो तो बस जारी है. और आज Patty जो है अपनी Babushona से यही कहना चाहती है कि जब भी तुम्हारा ख्याल आता है ना तो बस मेरे चेहरे पर अपनी आप एक मुस्कान नसी आ जाती है. तुम सिर्फ मेरे दिल में नहीं मेरी हर दुआओं में भी शामिल हो. तुम्हारा साथ मेरे लिए सुकून भी है और मेरी सबसे बड़ी खुशी भी. प्यार की सबसे खूबसूरत बात है तो यही है ना कि हर दिन तुम्हें पहले से ज़्यादा चाहने का मन करता है. सो इन द प्योर लव यहाँ पर हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं जस्ट टू एंजॉय द एवरग्रीन टाइमलेस सेटर का. सो रेडी हो की जो आपका कलेक्शन है आज आपने पसंद किया है. और पूनम भी तो आ गई है, शी इज ऑलरेडी हियर और वो लेकर आ रही है आज का बॉली ब्रंच. अब तक आपने नहीं लिया है ब्रेकफास्ट और आपने सोचा है कि इट विल बी नियरली टाइम फॉर लंच, सो टेक इट अ ब्रंच. यहाँ पे रेडियो मस्ती तो है ही आपके साथ, म्यूजिकल डोज जो आपको देते रहेंगे टू मेक इट मैजिकल. तो यूँ ही यहाँ पर साथ जारी है हंसनी जो थी आपके साथ और 11 बजे तक ये सिलसिला जारी है. दैट्स ओनली विद एवरग्रीन हिट्स जो चलेगा अप टिल 11 एएम. अभी इशारा है एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद आप लोगों के लिए मोर म्यूजिक.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: Jumbo, quality déco, fin l'osso extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds pas 100 roupies, des pieds pas 4 pieds pour 195.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
3: Time check, सुबह के 11 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. अभी से अभी आपको नमस्कार.
4: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ. मॉरिशस में घर बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 23 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार निर्माण मूल्य सूचकांक यानी कि कंस्ट्रक्शन प्राइस इंडेक्स में एक साल में 6.1% की बढ़ोतरी हुई है. काउंसिल ऑफ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर्स के चेयरमैन देवेन डालिया के अनुसार इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बाहर से मंगवाए गए सामानों की कीमत, फ्रेट मैरिटाइम का महंगा होना और सीमेंट जैसी स्थानीय चीजों के दामों में उछाल आना है. हालांकि इस महंगाई का असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ रहा है. बड़े निर्माण ठेकेदारों को कभी कभी उनके कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद एडजस्टमेंट क्लोज के जरिए सुरक्षा मिल जाती है, जबकि आम लोगों को बढ़ी हुई कीमतों और टैक्स का पूरा बोझ खुद ही उठाना पड़ता है. शुक्रवार से मॉरिशस को अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था से बाहर रखा गया है. इसका मतलब यह है कि मॉरिशस के निर्यातकों को अगुआ यानी कि अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट के तहत अमेरिकी बाजार में मिलने वाली छूट और लाभ आगे भी मिलते रहेंगे. सूट और कपड़े बनाने वाली कंपनी वेंसम लिमिटेड के निर्देशक अविनाश गुबर्दन के अनुसार ये निर्यात सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है. उनका यह भी कहना है कि ये सफलता सरकार द्वारा मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर की गई लंबे समय की कड़ी मेहनत का परिणाम है. मॉरिशस इस साल एचआईवी एड्स पर 22वें हिंद महासागर संगोष्ठी की मेजबानी करेगा. हालांकि इसकी सटीक तारीख तय होना अभी बाकी है. हर 5-6 साल में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में जुटे गैर सरकारी संगठनों को एक मंच पर लाएगा. कोमोरोस और मेडागास्कर के बाद अब मॉरिशस इस नए संस्करण का मेजबान बनने जा रहा है. इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है एचआईवी और यौन संचारित संक्रमणों के खिलाफ क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करना, टिकाऊ वित्तीय सहायता जुटाना और एचआईवी, हेपेटाइटिस और यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना. इस आयोजन में लगभग 300 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है. विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि इंडोनेशिया में स्पीड बोट के डूबने के बाद लापता लोगों में से 12 लोगों को बचाया जा चुका है. इनमें 11 यूरोपीय पर्यटक और एक स्थानीय क्रू मेंबर शामिल हैं. अब भी बोट के कैप्टन की तलाश की जा रही है. तो ये थी अब तक की खबरें. आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद. जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार. जिबे रोड रुजबेल में 82 साल के 82 years old के जनाब अजीज मुली, जिन्हें सब लोग आगुन के नाम से भी जानते थे, वंतकाल कर गया है. उनका जनाजा आज दोपहर की दो बजे उनके बेटे जनाब असन मुली के मकान जिबिया रोड रुजबेल से निकालकर यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 2 PM. कारोलालियन वाकुआ में 65 साल की 65 years old की श्रीमती दनमाउती लक्ष्मा, पैदाशी नाम

0: रसोकल और जिन्हें सब लोग नलिनी के नाम से भी जानते थे और जो LIC के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके पति श्री लक्ष्मा सिवचंदा के घर काहोलालियान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते। 11:08 हो चुके हैं। कल की शाम अभिजीत जी के नाम रही। क्या आवाज, क्या अंदाज और क्या शानदार माहौल। मैं हूँ आपके

0: साथ पूनम चलिए बॉली ब्रंच की शुरुआत करते हैं उनके एक सुपरहिट गाने के साथ। एंजॉय कीजिए गाने। अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है, कोई डेडिकेशन है और कुछ ऐसे दिल की कोई बात कहनी है तो हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए 5499124 पर। एंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
2: Yeah, we gotta work it out again with Kilogram. And I see you're listening to me, baby. It's like

0: मस्ती ब्रांच
1: आर एम टू रेडियो मस्ती। 11:18 हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपके अंदर कहते हैं ना रेडियो का जुनून है और आपको लगता है कि आपकी आवाज और आपकी एनर्जी पूरे मॉरिशस को बल्कि दुनिया भर के लिसनर्स का दिल जीत सकती है, तो ये आखिरी मौका सिर्फ आज ही है।

0: है भाई 26 जुलाई आज आखिरी दिन है। अगर आपको दिल करता है तो आप हमें वीडियो भेजिए बस एक मिनट की बना के और अब इस नंबर पे भेज दीजिए 5251-6363 पर, जिससे पूरी आवाज़ जो आपकी रिकॉर्ड होगी, जो एनर्जी आपकी रिकॉर्ड होगी, हम उसको सुनेंगे, हमारे सीनियर्स उसको सुनेंगे और हो सकता है ये अगली आवाज़ आपकी हो। तो हमारा ये लास्ट चांस है आज का, बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है, आप वो कर सकते हैं और वो जुनून है, तो बस आ जाइए हमारे साथ, इंजॉय कीजिए ये गाने और हमारा ये जो मैसेज है इसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं। जैसे भी आपको लगता है कि आप थोड़ा सा भी कर सकते हैं, ज़रूर भेजिएगा। एंजॉय कीजिए रेस्ट ऑफ द शो।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.
2: Yo, hello. Testing 1 2. Yeah.
3: कभी सोचा है
4: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
4: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
3: ओपन टू ऑल मॉरिशियस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
3: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
4: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
3: और आपका चांस।
4: डोंट मिस इट।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:36 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपनी प्रोग्राम के साथ यानी कि बॉली ब्रंच के साथ। मुझे पता है आप अगर अभी साथ में थोड़ा सा प्यारा सा ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो हमारे को भी साथ रख लीजिए और इस समय कुछ प्लान बनाया आपने, मतलब कहीं शाम को जाने का या अभी कहीं घूमने जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो जाइए खुलकर इंजॉय कीजिए अपने टाइम को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे गानों को भी अपने साथ लेके जाइए क्योंकि रास्ता कितना भी लंबा हो पर जब गाने साथ होते हैं, एक अच्छी कंपनी साथ होती है, मूड भी थोड़ा सा फ्रेश होता है, एंजॉय भी किया जाता है। बस थोड़ी सी टेंशन को दूर रखना है, क्या कहते हैं, टेंशन को थोड़ा सा दूर रखना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचना लाइफ के बारे में, बस लाइफ चलती रहनी चाहिए, एंजॉय करते रहिए अपने गानों को साथ में। आपको इतना ही हम बोलेंगे कि अभी जो टाइम है ना 11:36 जो हो चुके हैं, इस टाइम में अगर आपने अपने लिए घर में कुछ सफाई वगैरह कर रहे हैं या कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा 5-10 अपने आप को ज़रूर दीजिएगा। ये नहीं कि सारे घर के काम करते रहें सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक और अपने लिए 5 भी ना निकालिए, बस 5 कहीं बैठिए कॉर्नर में। अगर आप सुबह से उठे हुए हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 करते करते अगर पूरे दिन में आपने अपने लिए हाफ एन आवर निकाल लिया ना तो बस फिर और क्या चाहिए, यही टाइम आपका है, इसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। हम अभी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, टिप्स देने वाले हैं, ट्रिक्स होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बस गेम्स नहीं होंगे क्योंकि मेरे से पहले नीलमणि ने आपके साथ गेम्स खेली हैं, आपको वाउचर्स जितवाए हैं। मैं आपके साथ गेम तो आज नहीं खेलने वाली बट हाँ बस बहुत सारी बातें जरूर करेंगे। तब तक आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो भेज सकते हैं 5499-1294 पर।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:44 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। मैं तो कहती हूँ लंच भी कीजिए और बॉलीवुड के साथ साथ एंजॉय भी कीजिए। साथ में 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से आए हैं। ललित जी हैं जो कि यूएसए से साथ देते हैं हमेशा, और उनका कल बर्थडे है और उनकी फैमिली इंडिया से, उनकी दो सिस्टर्स मीनू, उनकी भतीजी और साथ में और वाइफ और सभी उनको परिवार को विश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस टाइम यूएसए में रात है, बट हम तो यही कहते हैं कि जब उसको मॉर्निंग हो तो वो कहते हैं ना कि एक हंसता हुआ स्माइल करता हुआ हमें याद करे और कहे कि अरे हमने तो देखो एडवांस में ही विश कर दिया, तो क्या बात है। थैंक यू सो मच पूरे परिवार का, और हम भी आपको अपनी पूरी एमबीसी की टीम की तरफ से आपको इतना ही कहेंगे, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। इंजॉय कीजिए अपने गानों को। साथ में ललिता जीतन जी जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं आई एम इंजॉइंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। प्रकाशवंती जी जो कि बेल्जियम से साथ दे रही हैं और उन्होंने एक स्पेशल एक अपने किसी चाहने वाले को कहते हैं ना घर में जब बच्चे होते हैं तो कोई स्पेशल ज़रूर होता है उसके बर्थडे के लिए, विश कर रही हैं और उन्हें कह रही है तुम बहुत ही अच्छे हो, अपना बर्थडे बहुत इंजॉय करना, मैं साथ में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस समय हीना, राहुल, कमल, कमलेश रानी, अमित जी, एलिना, हरीश जी, सुनीता जी, प्रिया, पुष्कर, रोशान, सीमा एंड बबीता जी भी साथ दे रहे हैं। इंजॉय कीजिए अपने गानों को और हम तो इतना ही कहेंगे ये भाई चन्ना वे घर आ जावे।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: freshness. Anytime, anywhere.
1: Radio Masti.
2: North. South.
1: 103.5.
2: East. West.
1: 96.4.
2: Center.
1: 99.4.
3: RM2, Radio Musty.
1: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. अभी से अभी आपको नमस्कार.
5: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. कल जारी की गई एक विज्ञप्ति में नेशनल लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी ट्रेन चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों पर जवाब दिया है. NLTA ने याद दिलाया है कि साल 2005 के बाद से मॉरिशस में टैक्सी के किराए की गई आधिकारिक दर तय नहीं है. इसीलिए उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सफर शुरू करने से पहले ही ड्राइवर से किराया तय कर ले. इसके साथ ही NLTA ने सभी टैक्सी चालकों से अपील की है कि वे आम जनता के कल्याण में सही और उचित किराया ही लें. बजट 2026-2027 के पेश होने के एक महीने से भी अधिक समय बाद इस मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल 2026 पेश किया जाएगा. इस विधेयक के जरिए 25 कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि टैक्स व्यवस्था, सरकारी अर्थव्यवस्था और साथ ही रिटायरमेंट पेंशन सुधार से जुड़ी बजटीय घोषणाओं को लागू किया जा सके. घरों का बिजली बिल कम करना और देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य से शनिवार को क्यूपेप में हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम की आधिकारिक शुरुआत की गई. ये परियोजना उन परिवारों के लिए है जिनकी मासिक आय 1,50,000 रुपए से कम है. इसके तहत 3,600 परिवारों को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी. ऊर्जा मंत्री पत्रिक आसियावादेन ने कहा कि इस पहल से कोयले और पेट्रोलियम पैदावारों के आयात में कमी आएगी और देश ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनेगा. सबसे पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद सब्सिडी प्राप्त करने के लिए DBM में आगे की कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी. विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने शनिवार को कहा कि मैड्रिड के पश्चिम में लगी आग में दमकल कर्मी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं. तेज हवाओं की आशंका के चलते स्थिति और भी मुश्किल हो गई है. सरकार ने बताया कि सूखे इलाकों में लगी आग की वजह से 70,000 लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा. अधिकारियों ने इसे इस इलाके में अब तक की सबसे भयानक आग बताया है. तो ये थी अब तक की खबरें. आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद. जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार. नंबर 14 पेरी रोड ग्लेन पार्क वाकवा में. नंबर 14 पेरी रोड ग्लेन पार्क वाकवा में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की मोहतरमा फायजा कमू. मोहतरमा फायजा कमू पैदाइशी नाम अकबर अली, वो इंतकाल कर गई हैं. उनका जनाजा आज दोपहर के 2 बजे उनके भाई जनाब यूसुफ अकबर अली के मकान नंबर 14 पेरिये रोड ग्लेन पार्क वाकवा से निकाल कर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए ग्लेन पार्क की सुनी मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान. फ्यूनरल टुडे एट 2 PM. नंबर 40 ए एवेन्यू लतानिये सुदना कैथ्रोबोन में. नंबर 40 ए एवेन्यू लतानिये सुदना कैथ्रोबोन में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सत्यावती गोपी जिन्हें सब लोग सती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनके पति श्री सत्य प्रकाश गोपी के

0: नंबर 40 ए एवेन्यू लातानिया सुदना कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.
2: Yo, testing 1 2. Yeah.
3: कभी सोचा है
4: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
4: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
3: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
3: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
4: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
3: और आपका चांस।
4: डोंट मिस इट।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:11 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल की आवाज में एक बारी आ। क्या गाना है भाई, एक बारी आ, एक बारी आ। और हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जाने वाले हैं शादी पे, तो वहाँ वाले लोग कह रहे होंगे जल्दी से आ, जल्दी से आ। तो चलिए भाई, जल्दी से जाने की बारी तो है, पर हम ये कहते हैं आपको कि कभी कभी जब आप फैमिली फंक्शंस में जाते हैं या कोई फेस्टिवल में जाते हैं, कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भाई बहुत सारी हैवी साड़ी डालनी पड़ेगी, तो कई बार क्या होता है कि आप लाइट सी साड़ी भी डालेंगे ना, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होगा, और अच्छे से हैवी से सिर्फ झुमके डालेंगे या कोई ऐसे इयर रिंग्स जो बहुत ही क्लासी लग रहे हों, गले में कुछ भी ना डालें, बिल्कुल सिंपल से डालें, एक पेयर बैंगल्स डाल लें, एक हाथ में वॉच डाल लें, और भाई प्यारी सी हील्स डाल के साथ में जाएंगे तो बहुत ही क्लासिक लगेंगे। और लड़कों के लिए हम बोले तो कुर्ता पजामा तो एवरग्रीन लगता है, साथ में पंजाबी जुत्ती डाल लो, मोजरी डाल लो, जो एक स्टाइल होता है ना लेदर सैंडल्स जैसा होता है बॉयज़ के लिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। वॉच डालो, थोड़ी सी परफ्यूम लगाओ, एंजॉय करो गानों के साथ में, जहाँ पे भी जा रहे हैं बस स्माइल को लेके जाना, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब स्माइल साथ होती है ना तो सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। तो चलिए स्माइल तो ले जाइए साथ में, उसके साथ में आपको इतना भी कहेंगे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गप्पे शप्पे मारनी है। अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो आप भेज सकते हैं 5499124 पर। एंजॉय कीजिए आपका ही गाने।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:22 हो चुके हैं दोस्तों और आप ही जुड़े हुए हैं अपनी प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। इस समय एंजॉय कर रहे हैं आप सब गाने और मेरे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आपकी पसंद के गाने चलाती हूं। कई बार मैं अपनी पसंद के चलाती हूं तो भाई चलो मिक्स एंड मैच हो जाता है, बट दिल तो करता है कि वो मैसेजेस जो कि आपने किसी स्पेशल के लिए भेजे होते हैं वो ज़रूर पढ़ने होते हैं। तो इस समय हमारे साथ कालीचरण फैमिली जुड़ी हुई है जिसमें से सासू माँ और ससुर जी अपनी बहुरानी यानी कि पूजा जी को बर्थडे की विश कर रहे हैं। कह रहे हैं बर्थडे तो उनका कल था पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या बात है, हम तो आपको बोलेंगे पूजा आप बहुत लकी हैं, आपको इतने प्यारे मम्मी पापा मिले हैं, एंजॉय कीजिए उनके साथ। और अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो प्यारा सा जो भी गिफ्ट है चाहे छोटे से छोटा भी सर आँखों पर रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और साथ में आशना साथ दे रही हैं अपनी मम्मी देवरानी जी को विश कर रही हैं और स्पेशली उनके हस्बैंड मम्मी जी के जो हस्बैंड हैं ज्वाला जी वो विश कर रहे हैं और पूरी फैमिली उनको विश कर रही है और कह रही हैं कि भाई आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता। इस समय डॉटर्स रेशमा अनुषा माधवी बेटा अंकुश सन इन लॉ विशाल नीतीश पोवेश डॉटर इन लॉ याशना फ्रॉम ऑल ग्रैंड किड्स ट्विस्टी एंजल पल्लवी यानी लिया किनाश लियान एंड सारे सभी फैमिली मेंबर्स एंड फैमिली उनको विश कर रहे हैं। तो भाई हम तो आपको यही कहेंगे हमेशा खुश रहो इन सबके साथ, इंजॉय करते रहें अपना बर्थडे को। उसके साथ में जीना जी साथ दे रही हैं जो कि पेरिस से हैं और इंजॉय कर रही हैं, साथ में सुरेश शर्मा साजदा भी जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं, साथ में हमारे श्याम देवी चरण जी भी जुड़े हुए हैं और अपने सब फ्रेंड सर्कल के साथ यानी कि लाला महान सुखी प्रेम सैदो रवीना आश्ले रावा एंड देवी चरण फैमिली पेरेव्या से ज्वाइन कर चुके हैं और इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने का, इंजॉय करते रहे, खाते पीते रहे, मुस्कुराते रहे, साथ में ही

0: हमारे एक और फैमिली मेंबर है आकाश चेतन मनसुख, जो कि बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। कह रहे ये गाना मुझे बहुत पसंद है, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे सभी फ्रेंड सर्कल को, जो भी कल कॉन्सर्ट में गए थे उन सब ने इंजॉय किया। तो चलिए भाई प्लीज़ हमें एक अभिजीत का गाना सुना दिए। और ये आप बोलो और हम ना चलाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। इंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गाना, जियो है आपकी फरमाइश के साथ जुड़ा हुआ।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: हमारी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:44 हो चुके हैं दोस्तों और आप दे रहे हैं साथ हमारा यानी कि रेडियो मस्ती के साथ, और हम आ गए हैं अपने एक प्यारे से छोटे से टिप की तरफ। तो चलिए, साथ दे रहे हैं रेडियो मस्ती का, तो मस्ती के साथ आपको मिलवाते हैं आपको एक ऐसी फैमिली से जिसे पेरेंट्स भी जानते हैं और स्टूडेंट्स भी जानते हैं, लेकिन कई बार हम उनसे दोस्ती करना भूल जाते हैं। ज़रा बताइए कौन सी फैमिली है वो, तो बच्चों की पढ़ाई आसान बना सकती है। यस यस, याद

0: याद करें। जी हाँ, उसे कहते हैं W फैमिली, यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच। और अगर आप जोड़ना चाहें तो हु को भी जोड़ सकते हैं। जब कोई नया चैप्टर पढ़ें तो इन सवालों को साथ पढ़िए, समझ भी जल्दी आता है, यदि याद भी जल्दी होता है, और एग्जाम्स का डर तो वैसे ही फुर हो जाता है। पेरेंट्स, अगर आप भी इस फैमिली के साथ देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए बच्चों को इसका, बिल्कुल उनको साथ बिठाए, उनको बताइए कि वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर। पेरेंट्स बताते ही हैं, टीचर्स भी बताते हैं, बट बच्चों को ये थोड़ा सा बस ऐसे लगता है कि बस ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई है। अगर आप किस लाइफ के किसी भी एज में हैं, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को साथ जोड़ लिया तो आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, और इसके साथ हमेशा जुड़े रहिए। ये फैमिली बहुत ही प्यारी सी है। ये मुझे ध्यान आया, हमारे एक बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं कुमार देवी चरण जी, जो कि टीचर ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी हैं। उन्होंने जी ये बोला कि भाई W फैमिली से मिला दो हम सबको, तो मैंने बोला चलो भाई पूरी फैमिली से मिलाते हैं आपको, एंजॉय कीजिए गाने, और ये फैमिली के साथ ज़रूर रहिएगा आप लोग, और बच्चों को भी इनके साथ ज़रूर रखिएगा।
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: 103.5
1: East, West,
0: 96.4
1: Center,
0: 99.4
2: RM2, Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं।

0: बिन राम गुलाम के सलाहकार राकेश भगोरी कल रात शिकायत दर्ज कराने सीसीआईडी पहुंचे। सोशल मीडिया पर पब्लिक इंटरेस्ट नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ तथाकथित स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। इन स्क्रीनशॉट्स में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने मर्केंटाइल मैरिटाइम ग्रुप मामले में एफसीसी के एक अधिकारी को निर्देश दिए थे। इस मामले में एमएसएम के कई पूर्व मंत्रियों, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ भी शामिल हैं, से पूछताछ हुई है या होने वाली है। इन संदेशों में अपना नाम और फोन नंबर देखकर राकेश भगोरी काफी दुखी हैं। उन्होंने इसे एक गलत इरादे से की गई हरकत बताया है और अधिकारियों से मांग की है कि इन पोस्टों के पीछे किसका हाथ है, इसकी पूरी जाँच की जाए। कुछ टैक्सियों, खासकर टैक्सी इत्तेहाद के बढ़े हुए किराए को लेकर मिल रही कई शिकायतों के बाद नेशनल लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एनएलटीए ने स्थिति स्पष्ट की है। कल जारी एक बयान में प्राधिकरण ने याद दिलाया कि 2005 से सरकार की ओर से टैक्सी किराए तय नहीं किए जाते, इसलिए चालक अपना किराया खुद तय करते हैं। किसी भी परेशानी से बचने के लिए एनएलटीए ने यात्रियों को सलाह दी है कि वाहन में बैठने से पहले चालक के साथ किराया तय कर लें। अंत में प्राधिकरण ने टैक्सी चालकों से अपील की है कि वे समझदारी दिखाते हुए उचित किराया लें। स्कॉटलैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में आज रविवार को बॉक्सिंग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले मॉरिशस समयानुसार शाम 4 बजे से शुरू होंगे। 65 किलोग्राम से कम भार की कैटेगरी में मॉरिशस के जिगी आगात का मुकाबला पापुआ न्यूगिनी के जेम्स पोल से होगा। ये इस वर्ग का दूसरा मुकाबला होगा। बॉक्सिंग में आज दो अन्य मॉरिशन मुक्केबाज भी रिंग में उतरेंगे। 54 किलोग्राम वर्ग में मारी गैब्रियल का सामना सामोआ की डोमिनिक होलैंड से रात के 9:30 बजे होगा। वहीं मॉरिशस के ध्वज वाहक फैब्रिस वालेरी 55 किलोग्राम से कम भार की कैटेगरी में प्री क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड के एलेक्स मुकाका से रात 10:45 बजे भिड़ेंगे। और विदेश खबरों में, तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक हुए धमाके में 2 लोगों की मौत की खबर है। मजदूर कामचलाव टिन शेड के नीचे पटाखे बना रहे थे, तभी अचानक आग लग गई। वे रासायनिक पदार्थों के साथ काम कर रहे थे। फैक्ट्री में लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच फायर और रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। हापा लेन ग्लेनपार्क वाकवा में 78 साल की 78-year-old की मोहतरमा फायसा कमू पैदाशी नाम अकबर अली इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे उनके भाई यूसुफ अकबर अली के घर नंबर 14 पेगी रोड ग्लेनपार्क वाकवा से उठाकर नमाज जनाजे के लिए ग्लेनपार्क की सुन्नी मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए थ्वामामेल का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। नंबर 40 ए एवेन्यू लातानिये स्विडनाक कात्रोबोन में 79 साल की 79-year-old की श्रीमती सत्यावती गोपी, जो सती से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सफर बाद के 3 बजे उनके पति सत्य प्रकाश गोपी के घर नंबर 40 ए एवेन्यू लातानिये स्विडनाक कात्रोबोन से उठाकर सुल्फेगिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Bolly Branch RM2 Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:08 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम यानी कि परी ब्रंच के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। तो मैं तो इतना ही बोलूंगी, क्या आपकी आवाज़ में जादू है, दम है, क्या आपकी बातों में वो बात है जो लोगों के चेहरे पर एक प्यारी सी हल्की सी मुस्कान लेकर आ सके। तो इंतज़ार मत कीजिए, आखिरी दिन है, 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए इस नंबर पर यानी कि 5251-6363 पर, शायद अगली आवाज़ जो रेडियो पर हो वो आपकी हो सकती है। जैसे भी आपका चेहरा है, जैसे भी है, आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं फिट हो सकते हैं तो बिल्कुल वेट नहीं करना है। आप ये मत सोचिए कि अरे मुझे तो ये नहीं पता, वैसे नहीं पता, आपको लगता है तो भेज दीजिए, इंजॉय कीजिए गाने और साथ में जब ये वीडियो भेजेंगे तो ये आखिरी दिन है, इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलने वाला। तो ये बस प्यारा सा हमारी रिक्वेस्ट है, आखिरी दिन को इंजॉयबल हम बनाएंगे आपके साथ, पर आपने हमारे को ये भेजनी है वीडियो जो कि बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। इंजॉय कीजिए ये गाना।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251 6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: Holly Branch, RM2, Radio Masti.
1: 1:20 हो चुके हैं और आप सुन रहे थे उदित नारायण और मास्टर विघ्नेश और बेबी पूजा की आवाज़ में प्यारा सा एक तारा. और ये जो प्यारा सी रिक्वेस्ट की थी ये भेजी गई थी प्रिशा की तरफ से और उन्होंने कहा उनकी बिटिया के लिए प्यारा सा गाना ज़रूर चलाएगा, उसे बहुत पसंद है. तो प्रिशा हमेशा खुश रहो, ये गाना आपके लिए था. और इस समय हमारे साथ राजीव जी सैम्पिया से जुड़े हुए हैं और नीतू जी जो कि पलमा से हैं, कथाभोन से. उनका 21 जुलाई को बर्थडे था पर उनको कह रहे हैं कि मेरा तो दिल करता है एवरी 24 आवर्स मैं मैसेज करूँ और उनको बोलूँ कि कैसा रहा आपका बर्थडे, इन्जॉय किया ना. तो बिल्कुल इन्जॉय किया होगा. आप सबका जो साथ है वो हमेशा साथ बना रहे. इस समय किरण एंड रावण भी साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लास्ट ईयर हम जंजीबार शिफ्ट हो गए थे और लगता है कि रेडियो मस्ती ने बिल्कुल ठान रखा है कि हमें एहसास ही ना हो कि हम आउट ऑफ मॉरिशस रहते हैं. हमें लगता ही नहीं है कि हम बाहर आ गए. हमारा साथ रेडियो मस्ती हमेशा देता रहता है. थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल मैसेज भेजने के लिए मैम. शिमला आदिल, ईशान, सुमिति, सीमा, मधु ललोरा फैमिली से विश कर रहे हैं. उन मधु की सिस्टर की बेटी की शादी है आज और वो कह रही है कि प्लीज़ एक गाना ज़रूर चलाइएगा और हम सारी फैमिली लालोरा में जो बिटिया रानी है उसको विश कर रहे हैं कि हमेशा खुश रहे. अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हैं तो क्यों ना उस प्यारे से प्यार के साथ शुरू किया जाए. क्या बात है, थैंक यू सो मच. हम तो यही कहेंगे, हम सभी को विश करते हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनका बर्थडे है, चाहे एनिवर्सरी है, चाहे वेडिंग सीज़न चल रहा है और वेडिंग्स हैं, तो बस हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें. साथ में यलेश जी भी जुड़ चुके और कह रहे हैं कि भाई संडे हो और रेडियो मस्ती ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. एंजॉय कीजिए अपना ये गाना.
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:33 हो चुके हैं दोस्तों, क्या बात है। मतलब थर्ड आवर स्टार्ट हो रहा है, उसका भी सिर्फ हाफ एन आवर रह गया, पता ही नहीं चलता कब शुरू हुआ टाइम और कहाँ गायब हो गया। मेरे साथ तो यहाँ पर ये है, पर आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, जब सुबह उठे होंगे तो अब बस दोपहर आ गई, फिर शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, ऐसे ही दिन रात पता ही नहीं चलते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंजॉय करते रहिए। चलिए एक बात करते हैं, अगर आप नए स्पेक्टिकल्स बनवाने जा रहे हैं तो फ्रेम चुनने का टाइम भाई क्या रखते हैं आप, जब चुनते हैं तो क्या क्या प्लान करते हैं, किसी भी टाइम चले जाते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि भाई स्पेक्टिकल्स बनवाने हैं, कोई टाइम है? हाँ जी बिल्कुल टाइम है, कि मेरी एक छोटी सी सलाह है वो ज़रूर अपनाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप जब स्पेक्टिकल्स लेने जाएं या अपने ग्लासेस बनवाने जाएं तो सुबह या दोपहर की नेचुरल लाइट में ही फ्रेम पसंद करें, उसी रोशनी से उसकी असली कलर और लुक सबसे अच्छी तरह से समझ आता है, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो समझ आती है। बट अगर रात को देखने जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि कौन सी कोटिंग करें, कौन से ग्लासेस लें, कौन से फ्रेम लें, क्योंकि जो इनसाइड के लाइट्स होते हैं उसमें सारे फ्रेम्स अच्छे लगते हैं, बट जब आप नेचुरल लाइट में देखते हैं तो एहसास होता है अरे ये थोड़ी सी डार्क हो गई, अरे ये थोड़ी सी लाइट हो गई। तो आपको क्या करना है, जब भी ग्लासेस ऑर्डर करें तो एक बात ज़रूर आप उससे पूछिएगा जिससे भी आप स्पेक्ट्स बनवा रहे हैं, क्या लेंसेज में एंटी स्मज या ऑयल रेजिस्टेंट कोटिंग है। अगर आप किचन में ज़्यादा रहते हैं, मतलब लेडीज़ तो किचन में रहते हैं, अगर जो मेल्स हैं वो भी जब ऑफिस जाते हैं तो उनका हाथ कहीं ना कहीं लगते रहते हैं, फ्रेम पे लगते रहते हैं, और उसमें क्या होता है उंगलियां लगने से जो लेंसेज हैं बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, पर जब आपने ये कोटिंग कराई होती है तो उससे गंदे भी नहीं होते, आसानी से साफ़ हो जाते हैं। सिंपल टिश्यू से लेंगे या नॉर्मल पानी से उसको एक बार सोप से वॉश

0: कर लेंगे तो भी ये हो जाएगा, पर अगर आपने ये कोटिंग नहीं डलवाई तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर आप अगर छोटी छोटी सी ये चेंजेस करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और आप करेंगे अरे ये तो बड़े आराम से क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है सब कुछ। और जो हमारे ओल्ड बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए तो ज़रूर ये कोटिंग ज़रूर करवाया कीजिए, इससे आपको साफ दिखेगा, नेचुरल दिखेगा, ईजी दिखेगा। और हमेशा स्पेक्स लेने के लिए कहाँ जाना है, बिल्कुल दोपहर के टाइम या सुबह के टाइम ही जाना है। इंजॉय कीजिए गाने।
1: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentinat Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: तोहर भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगे खड़ा बा। तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय समाधान देवेला जेकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे है जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिय या sikkim.mu पर जाइय। इमे नियम और शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
4: RM2
5: रेडियो मस्ती।

आज एक छोटा सा चैलेंज जरूर लीजिएगा, आधे घंटे के लिए अपने फोन को साइड में रख दीजिएगा, पूरा परिवार देखना कैसे आपसे बातें करने लगेगा, और बहुत सारी बातें आपका वेट कर रही हैं। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

दोस्तों आज के बॉलीवुड ब्रंच में बस सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपका संडे और खूबसूरत बन गया होगा। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपनों का साथ रहिए, वक्त बिताना बहुत अच्छा होता है। आरएम टू रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ है। मैं थी आपके साथ पूनम, मेरे बाद आपको साथ मिलेगा परी का। मेरी तरफ से बाय बाय।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check दोपहर के 2 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से. गीता जी आपको नमस्कार.

नमस्कार पूनम, सभी को हमारा नमस्कार। बजट 2026-2027 के पेश किए जाने के एक महीने से भी अधिक समय बाद इस मंगलवार को राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल 2026 पेश किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए 25 कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि टैक्स व्यवस्था, सरकारी अर्थव्यवस्था और साथ ही रिटायरमेंट पेंशन सुधार से जुड़ी बजटीय घोषणाओं को लागू किया जा सके।

0: में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में आज रविवार को बॉक्सिंग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले मॉरिशस समयानुसार शाम 4 बजे से शुरू होंगे। 65 किलोग्राम से कम भार की कैटेगरी में मॉरिशस के जिगी अगत का मुकाबला पापुआ नुगिनी के जेम्स पोल से होगा। इस वर्ग का ये दूसरा मुकाबला होगा। बॉक्सिंग में ही आज दो अन्य मॉरिशन मुक्केबाज भी रिंग में उतरेंगे। 54 किलोग्राम वर्ग में मारी गैब्रियल का सामना सामोआ की डोमिनिक ओलांद से रात 9:30 बजे होगा। वहीं मॉरिशस के ध्वजवाहक फैब्रिस वालेरी 55 किलोग्राम से कम भार की कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड के एलेक्स मुकाका से रात 10:45 बजे भिड़ेंगे। और विदेशी खबरों में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि मैड्रिड के पश्चिम में लगी आग में दमकल कर्मी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज हवाओं की आशंका के चलते स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। सरकार का कहना है कि सूखे इलाकों में लगी आग की वजह से 70,000 लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। अधिकारियों ने इसे इस इलाके में अब तक की सबसे भयानक आग बताया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। नंबर 40 ए एवेन्यू लातानी सुडनाक कातोबोन में 89 साल की 79 ओल्ड की श्रीमती सत्यावती गोपी, जो सती से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सफर बाद के 3 बजे उनके पति सत्यप्रकाश गोपी के घर नंबर 40 ए एवेन्यू लातानी सुडनाक कातोबोन से उठाकर सुल्फेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
2: डोंट मिस इट।
3: Plug and play.
4: RM2.
3: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: मुड़के ना देखो दिल भरो इसी खूबसूरत गाने के साथ आपका वार्म वेलकम ऑन दिस संडे आफ्टरनून. वेल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपका संडे अच्छे से बीत रहा है. अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले, जहां पर मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM. चलिए दोस्तों, संडे का दिन जहां पर आप होपफुली थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, गानों को एंजॉय कर रहे हैं, और आपकी इस आफ्टरनून को खास और स्पेशल बनाने कुछ ऐसे गानों का प्लेलिस्ट हम लेकर आए हैं जिन्हें सुनते सुनते आप रिलैक्स कर सकते हैं, एक बार फिर थोड़ा सा रिचार्ज कर सकते हैं. आई नो पूरा हफ्ता काम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और एनर्जी भी लगती है, सो बस अभी के लिए तो गुड वाइब्स आप तक पहुंचा रहे हैं. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM. आप भी अगर साथ निभा रहे हैं, नॉट टू फॉरगेट, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर रहेगा आपका इंतजार.

0: RM2 Radio Musty.
1: सोएल यहाँ पर यलेश हमारा साथ दे रहे हैं आप और सभी शाम परिवार ऑफ सुरनाम थैंक यू सो मच ट्यूनिंग किया है सो गाना आपके नाम वी आल्सो हैव डियरेस्ट जीना जोयसरी हमारा साथ दे रही हैं हम बिल्कुल ठीक है जीना जी उम्मीद करते हैं एवरीथिंग ओके ऑन योर साइड चलिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग जो हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम एंड विशिंग यू अ हैप्पी संडे इक्वली गोज आउट फॉर ऑल योर लव्ड वंस एंड यहाँ रेडियो मस्ती टीम से भेज रहे हैं आपके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज साथ ही यहाँ पर मीनाक्षी साथ दे रही हैं आप पतवा बुचिक से सो साथ देने के लिए शुक्रिया मीनाक्षी संडे आफ्टरनून है हमारा साथ दे रहे हैं आप सो कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम चला रहे हैं दैट्स योर प्लग एंड प्ले एंड बस कोशिश रहेगी कि आपके दिलों को हम एंटरटेन कर पाएं आपके चेहरे की स्माइल ऐसे ही बरकरार रख पाएं और अगर है साथ दे रहे हैं आप भी सो ऑल यू हैव टू डू इज आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन ऑन 5499 1294 फ्रॉम द फिल्म पद्मावत नीति मोहन की आवाज पिक्चराइज ऑन द वेरी गॉर्जियस दीपिका पादुकोण We have this Ghana, aap sabhi ke naam, happy afternoon, happy Sunday.

0: to Radio Musti.
1: तोहर भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगे खड़ाबा, तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय समाधान देवेला जेकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे है जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिया या sikkim.mu पर जाइया। इमे नियम आशर्त भी लागू बा सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2
3: रेडियो मस्ती।

0: track and play.
1: RM2.
2: So well, ये था एक ट्रीट फॉर ऑल द फैंस ऑफ अरिजीत सिंह. क्या ही सिंगर है, क्या ही आवाज़ है. और वैसे उनका कहना था कि उनकी आवाज़ ऐसी नहीं थी, उन्होंने अपनी आवाज़ को तोड़ा है. और रियलिटी शोज़ में हमने देखा था जहाँ पर उनकी शुरुआत हुई थी एट अ वेरी यंग एज, और तब उनकी आवाज़ टोटली डिफरेंट हुआ करती थी. लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ को इस तरह से तोड़ा, इस तरह से ब्यूटिफुल बनाया कि अब जब भी अरिजीत सिंह की आवाज़ सुनते हैं लगता है कि बस इस आवाज़ को सुनते जाए. सो अरिजीत सिंह फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा साथ दे रहे हैं आप. 2:40 हो चुके हैं एंड आई डू होप यू आर एंजॉयिंग योर संडे आफ्टरनून.

टून हमारे इन गानों के साथ। तो चलिए यहाँ पर जीना जी हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं हैप्पी संडे तो है बिकॉज आई एम लविंग द सॉन्ग्स एंड ये जो प्यारे प्यारे गाने हैं वो आपके मूड को सेट कर रहे हैं, ये जानकर अच्छा लगा। अभी के लिए वी हैव अ लॉन्ग मैसेज यहाँ पर। एशना हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं कि आज ममा देवरानी बंसुदेव अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, रिवाइव रहती हैं एंड उनके लिए स्पेशल विशेज ये है फ्रॉम अ हस्बैंड ज्वाला, उनकी बेटियाँ हैं रेशमा अनुषा माधवी, बेटा अंकुश, उनके दामाद विशाल नीतीश पुवेश, उनकी बहुएं यानी कि डॉटर इन लॉ है येशना एंड फ्रॉम ऑल हर ग्रैंड किड्स तुष्टि है, एंजल पल्लवी यानी लिया एंड कियांश लियान भी है। और मैसेज आपके लिए यही है हमारी प्यारी सी देवरानी जी, दैट आपको बहुत प्यार करता है आपका परिवार, वी लव यू मॉम एंड लोड्स ऑफ गुड विशेस टू यू, और बस हमारा साथ दे रहे हैं आप। सो दैट्स आरएम टू रेडियो मस्ती, थैंक यू सो मच एशना एंड गुडी गुड विशेस फॉर योर डियरेस्ट मामा ऑन हर स्पेशल स्पेशल डे। और वैसे आप तो हमारे लिए खास है और जब आपके जन्मदिन आपका जन्मदिन होता है तो इसे खास बनाना तो बनता है। अभी यहाँ पर शाहीन साथ दे रही है पोर्टलुइस से और कहती है दैट गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ फॉर माई लव शमशाद, वो भी कनेक्टेड है हमारे साथ। सो हैप्पी संडे विशेस टू ईच एंड एवरी वन जो हमारे साथ कनेक्टेड है। कोशिश यही रहेगी कि गानों के साथ आपके दिल को बहलाए, आपके दिल को लुभाए। So for now, after Arijit Singh, it's Jubin Nautiyal. एक और आवाज जो बहुत प्यारी है और ये गाना सुपर रोमांटिक साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स, याद दिला दे दैट्स योर प्लग एंड प्ले। मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM, कनेक्टेड हैं आप भी। सो ड्रॉप इन आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499-1294।

ये तो हर रोज हमें गले लगाती है और देती है 24 नए घंटे एवरी डे जहाँ पर हम कुछ खास और स्पेशल कर पाएं। लेकिन संडे का ये जो दिन होता है, संडे की ये जो आवर्स होते हैं, बस दिल चाहता है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएं, थोड़ा सा आराम कर पाएं। सो अभी के लिए आपके इस रिलैक्सिंग टाइम में हम भी घोल रहे हैं कुछ म्यूजिकल रंग और प्यारा सा गाना लेकर आए हैं आप सभी के लिए। महालक्ष्मी अय्यर, उदित नारायण की आवाज, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म टशन, फलक तक लेकर जा रहे हैं आपको विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। गानों को सुनते हुए आप अपने संडे को एंजॉय करें और कनेक्टेड है हमारे साथ। सो ड्रॉप इन आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499124 पर। फनाओ रेडियो मस्ती के साथ जुड़ी हुई है गीता, सीता, सभी बोलोराम परिवार शातो बनारस से। सो हैव अ वंडरफुल टाइम एंड हमारे अपाडु परिवार, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो हैप्पी संडे, ये गाना आप सभी के नाम।

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें. गीता जी से आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार. तटीय इकोसिस्टम पर बढ़ते दबाव के बीच मैंग्रोव का संरक्षण पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है.

अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस के अवसर पर ग्रीन पीस अफ्रीका स्थानीय निवासियों और स्वयं सेवकों ने रिवियरा डी क्रियोल में सफाई और जागरूकता अभियान चलाया। इस पहल का उद्देश्य लोगों को ये याद दिलाना था कि ये तटीय वन समुद्री तट के संतुलन और संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलू की फसल की कटाई का मौसम अब खेतों में शुरू हो गया है। हर साल स्थानीय उत्पादन मौसम और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर लगभग 13,000 से 16,000 टन के बीच रहता है। मॉरिशस में सबसे लोकप्रिय और सबसे

0: की किस्म स्पुंता है। इस उत्पादन के साथ देश की कुल मांग का लगभग 60% स्थानीय स्तर पर पूरा किया जाता है। कुछ टैक्सियों खासकर टैक्सी ट्रेन के बढ़ते हुए किराए को लेकर मिल रही कई शिकायतों के बाद NLTA ने स्थिति स्पष्ट की है। कल जारी एक बयान में प्राधिकरण ने याद दिलाया कि 2005 से सरकार की ओर से टैक्सी किराए तय नहीं किए जाते, इसलिए चालक अपना किराया खुद तय करते हैं। किसी भी परेशानी से बचने के लिए NLTA ने यात्रियों को सलाह दी है कि वाहन में बैठने से पहले चालक के साथ किराया तय कर लें। प्राधिकरण ने टैक्सी चालकों से अपील की है कि वे समझदारी दिखाते हुए उचित किराया लें। और विदेशी स्तर पर तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है। मजदूर कामचलाओ टिन शेड के नीचे पटाखे बना रहे थे, तभी अचानक आग लग गई। वे रासायनिक पदार्थों के साथ काम कर रहे थे। फैक्ट्री में लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच बचाव कार्य जारी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: ले जाए जाने कहां हवाएं बस हवाएं तो आपको लेकर आई है ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती और इन हवाओं के साथ ही हमारा म्यूजिक आपके दिलों तक पहुंच रहा है सो वार्म वेलकम हमारा जो साथ दे रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स यस लेकर आए हैं आपके लिए प्लग एंड प्ले जहां पर हम प्ले कर रहे हैं कुछ ऐसे गाने जो शायद आपके संडे को थोड़ा सा और खास एंड स्पेशल फील करवा रहे हैं होता है ना दोस्तों एट टाइम्स कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको किसी खास की याद दिलाते हैं कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके साथ हैप्पी मोमेंट्स जुड़े होते हैं और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि ओ दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग शायद आपने इस गाने को पहली बार सुना और पहली ही बार में वो गाना आपके दिल में उतर गया तो बस म्यूजिक इज अ थेरेपी और जैसे हम कहते हैं एवरीडे गुड म्यूजिक आप तक पहुंचाना ये हमारा काम है और आपको खुश रखना आपको खुश देखना ये हमें खुशी देता है सो आई डू होप कि लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं आप इन्हें पार करते हुए बस आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां एंजॉय करें और रवि के लिए साथ दे रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स अ वार्म वेलकम 3:14 मैं हूं परी आपके साथ गुड म्यूजिक के साथ कुछ हैप्पी वाइब्स आप तक पहुंचा रही हैं एंड यहां पर शामिल होता हुआ ये गाना अरमान मलिक अमाल मलिक टू मलिक ब्रदर्स वेरी टैलेंटेड सुपर टैलेंटेड ब्रदर्स और चलिए अभी के लिए ये गाना आप सभी के नाम हैप्पीनेस की बात की है और संडे तो होता ही है खुश रहने के लिए और खुशियों को जिंदगी में और भी एनहांस करने के लिए सो थैंक यू हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं आप मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 पीएम योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 54991294 पर एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन सॉन्ग टू एवरीवन जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे

सो गाना होगा आपके सभी स्टूडेंट्स के नाम और आप भी साथ निभाते रहिए ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती. शैला आसादेरी है गुडलैंड से और अगला गाना डेडिकेट करना चाहती हैं फॉर बेटा श्रीकांत और आपकी बहू येशना. इक्वली गोज आउट फॉर ग्रैंडसन श्रेयान एंड संजय जो इस वक्त जा रहे हैं सीसाइड. सो दैट्स अ परफेक्ट संडे जहां पर शैला जी अपने सभी लव्ड वंस को याद कर रही हैं, बेटे को, बहू को, ग्रैंडसन को एंड एवरीवन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है. सो वी हैव अ ब्यूटिफुल सॉन्ग और ये है पलक मुचल की आवाज में, डेडिकेट करेंगे आप सभी के नाम. दैट्स अ लवली फ्रॉम द फिल्म एम एस धोनी. जैसे हमने कहा कि कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है लेकिन कभी कभार हमारे पास अल्फाज नहीं होते, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते. लेकिन अगर आप भी किसी को दिल से पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, एवरीवन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं उन सभी के नाम एंड इक्वली गोज आउट हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है. एंजॉय दिस वन.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: सो वेल फ्रेंड्स, बस खुशियों का भी ऐसा ही है. आप जब प्लग करना चाहे इसे प्लग करके प्ले कीजिए, बिकॉज हैप्पीनेस ये तो आप ही के हाथ में है. इट्स ऑल इन द माइंड. कभी कभार कहते हैं कि हम इतना कुछ सोचते हैं, इतना ओवरथिंक करते हैं, और कभी कभार ऐसे सिचुएशंस भी हम क्रिएट कर लेते हैं जो शायद लाइफ में कभी नहीं होने वाली है, लेकिन होता है, हम सब के साथ ऐसा होता है. लेकिन जब आप सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, तो फिर देखिए कि यूनिवर्स कैसे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा करता है, सब कुछ अच्छा अच्छा भेजता है. और हम भी यहाँ पर यही विशेज लेकर आते हैं कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, यू ऑलवेज बी हैप्पी. लाइफ में खुशी और पीस आपको हमेशा मिलता रहे. सो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो वक्त आ चला है कि परी आपसे ले अलविदा. लेकिन जाने से पहले आपके कुछ मैसेजेस, डेडिकेशंस जो हम तक पहुंच गए हैं. ललिता जीतन सा दे रही हैं आप और कहती हैं, इस वक्त सी साइड हूं बेलमा में एंड एंजॉयिंग फुल वॉल्यूम पर आपका शो. सभी फ्रेंड्स साथ है और गाना फॉविमी पल्लवी, रिया, रॉकी, जिया, टीना, रूमी, पिंकी एंड ललिता, सभी जीतन परिवार हमारे साथ कनेक्टेड है. आप सो हैव अ वंडरफुल टाइम. वी आल्सो हैव प्रीतम जी, हमेशा साथ देते हैं आप और कनेक्टेड है, एंजॉय कर रहे हैं इन प्यारे गानों को. सो गाना होगा आपके नाम, फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ वर्षा एंड विशिंग यू अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. साथ ही साथ तैयब जी हमारा साथ दे रहे हैं आप. सो प्यार भरा सलाम आपके नाम भी, और साथ देने के लिए शुक्रिया रेडियो मस्ती को चुनने.

0: के लिए शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, परी साइनिंग ऑफ और मेरे बाद आ रहे हैं संजय लेकर म्यूजिक टक टका टक, यानी कि गुड गुड म्यूजिक, गुड गुड सॉन्ग्स आप तक पहुंचने वाले हैं। सो एंजॉय योर संडे आफ्टरनून रेडियो मस्ती के साथ, और वादा रहा मुलाकात होगी जल्द कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक, लेकिन प्रोग्राम होगा बॉम्बे टॉकीज। सो कहीं मत जाइए, संडे को एंजॉय करें एंड हैव अ वंडरफुल टाइम, हैव अ म्यूजिकल टाइम।
1: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट Radio Masti, your number one beloved station.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: इसमें शाम के चार बज रहे हैं। सुनते समाचार की तैयारी के साथ नमस्कार।
6: सभी को हमारा नमस्कार। अगले मंगलवार 28 जुलाई को संसद में सबकी नजर दो अहम विधेयकों पर रहेगी, जिसका मकसद बजट में घोषित उपायों को लागू करना है। अप्रोप्रिएशन बिल के बाद अब बारी है फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल की। प्रधानमंत्री और

मंत्री की ओर से पेश किए गए इन दोनों विधेयकों में 80 से ज्यादा कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। तटीय इकोसिस्टम पर बढ़ते दबाव के बीच मैंग्रोव का संरक्षण पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस के अवसर पर ग्रीन पीस अफ्रीका स्थानीय निवासियों और स्वयं सेवकों ने रिविया दे क्रियोल में सफाई और जागरूकता अभियान चलाया। इस पहल का उद्देश्य लोगों को ये याद दिलाना था कि ये तटीय वन समुद्री तट के संतुलन और संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कॉटलैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में आज रविवार को बॉक्सिंग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले मॉरिशस समयानुसार शाम 4 बजे से यानी इसी समय से शुरू हो रहे हैं। 65 किलोग्राम से कम भार की कैटेगरी में मॉरिशस के जिगी आगात का मुकाबला पापुआ न्यूगिनी के जेम्स पोल से होगा। ये इस वर्ग का दूसरा मुकाबला होगा। बॉक्सिंग में आज दो अन्य मॉरिशन मुक्केबाज भी रिंग में उतरेंगे। 54 किलोग्राम वर्ग में मारी गैब्रियल का सामना सामोआ की डोमिनिक होलैंड से रात 9:30 बजे होगा। वहीं मॉरिशस के ध्वजवाहक फैब्रिस वैलेरी 55 किलोग्राम से कम भार की कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में

0: इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है और दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Music, Dr. Gatta. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: हर संडे की शाम 4 से लेकर 7 बजे तक हमारे आपकी मिलने की घड़ी सबों को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती आशा करते हैं कि ये वीकेंड ठीक से गुजर रहा होगा आप सबों के लिए आप जहां पर भी होंगे घर पर होंगे काम पर होंगे या तो किसी विशेष फंक्शन में गए हुए होंगे Wishing you all very very nice listening on Radio Masti. Aap sabon ko.

0: सेक्टर कटर
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: स्वीट हाई टू ऑल दोस्त जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमें मैसेज भी कर रहे हैं, उनमें से एक हैं प्रेमिला जी, जो प्लेंडी व्यापारी से बहुत सारा प्यार हम तक पहुंचा रही हैं। प्रेमिला जी, आपको और आपकी पूरी फैमिली को हमारा प्यार। साथ ही साथ शादु बेनारस की ओर से ज्योति जी, जो हमेशा रेडियो मस्ती के साथ जुड़ी रहती हैं, आपको भी हमारा प्यार भरा सलाम। सज्जनों, इन दिनों शादी का बहुत प्यारा सा माहौल बंधा हुआ है मुझे, इसमें चारों ओर जहाँ देखे वहाँ पर शादी हो रही है। शादी के पवित्र बंधन में हमारे नौजवान बन रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं टू ऑल दोस गेटिंग मैरिड इन दिस वीकेंड। और ख़ास तौर पर शुभकामनाएं हमारी प्यारी बहन सृष्टि को और हमारे जीजा जी केविन जी को, दोनों परिवार को बहुत बहुत बधाई एंड ब्लेसिंग्स टू द न्यूलीवेड कपल।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: So we've got some very good news from the Commonwealth Games, जहाँ पर मिशेस की जिगी आगात की जीत हुई in boxing. So congrats to जिगी आगात और उनके सभी जो entraîneurs, जो coaches हैं in boxing. So it's good going for the boxing team in the Commonwealth Games. Stay tuned on Radio Masti. हम आपको और जानकारी देंगे on these ongoing games.

0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: What a cool, peaceful and very comfortable Sunday afternoon जो आप हमारे साथ गुजार रहे हैं on the frequencies of Radio Musti. ये जैसे कि एक रेंडेवू बन जाता है हर संडे की शाम को spending some good family time together और साथ ही साथ रेडियो पर प्यारे प्यारे cool relaxing music चल रहा होता है. And you can send me your messages, drop me your messages on 549924 जैसे कि यार राष्ट्रीन जी ने लिखते हैं once the seed of faith take root it cannot be blown away even by the strongest wind. Now that's what we call blessing. उन्होंने कोट किया रूमी जी को. Thank you नाश्रीन for always being there every Sunday. ये अगला मैसेज है छाया देवी जी की ओर से for the whole Sukhoi family of Pelgan. Thank you छाया देवी जी.

के इस प्यारे मैसेज के लिए वीना वीना जी जो बेलवी मुगल से हमारा साथ निभा रही हैं उनकी ओर से फॉर ऑल हर कलीग्स एंड ऑल हर फ्रेंड्स और लगे हाँ जितने भी लोग हमें हॉस्पिटल्स में से हॉस्पिटल्स में काम करते हुए हमारा साथ निभा रहे हैं आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया एंड कंग्रेचुलेटिंग यू ऑन डूइंग योर जॉब सो वेल।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: रेडियो का तो यही मकसद होता है कि दूरियों को कम से कम किया जाए, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर एज अ बॉन्ड, एज अ ब्रिज बिटवीन यू एंड योर लव्ड वंस। क्योंकि आज के ज़माने में जो कुछ आप नहीं कह पाते हैं, हम आपकी आवाज़ बन जाते हैं वी आर रेडियो, और आपके दिल के जज्बातों को पहुंचाते हैं आपके अपनों तक। नंदिनी जी इस समय हमारा साथ निभा रहे हैं, उनको करते हैं सलाम प्रणाम। आपको भी नंदिनी जी, एंड थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल बुके ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट सॉन्ग ऑल्सो गोइंग फॉर यलेश श्याम जी, जो सुरीनाम से हमारा साथ हमेशा निभाते हैं। Next song, wishing all those who are getting married a lifetime of happiness, and special wish goes to cousin Shweta who is getting married today, aur saath hi saath Shafinaz ko jinka nikah next week hone wala hai, and that's from Sweetie G of Pai. This next message aa raha hai Nani Sangeeta ji ki aur se likhte hain, superb show Sanji, congrats to the whole team, aur buri kaki good. thank you Nani ji aapke is message ke liye. Yes, it was a wonderful experience, Buri Kaki, being staged at Serge Constantin, and a big thanks to all those who came to watch the play. And aapki aur se vishesh badhai to Isha. So message from Nani Sangeeta ji, likhte hain superb show.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस म्यूजिकल जर्नी ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती. और अभी अभी एक कॉल आया एक लिसनर की ओर से जो हमसे जानकारी मांग रहे थे कंसर्निंग द वन डे आर जे प्रोमो. सो हमारे दोस्त को आई सपोज इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट नंबर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप एक पेपर ले लें एक पेन ले लें टू राइट डाउन द एग्जैक्ट नंबर वेयर यू गो टू सेंड योर वीडियो. ऐसे यू विल बी एबल टू सेंड योर वीडियो ऑन द राइट नंबर. साथ रहे साथ में ये भी जानने कि टुडे इज द लास्ट डेट ऑन दिस 26th of July. सो हियर फॉर यू द प्रोमो और ध्यान से सुने द नंबर एंड देन यू विल बी एबल टू सेंड योर प्रोमो योर वीडियो एट द राइट एड्रेस.
3: कभी सोचा है
4: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका.
4: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
3: ओपन टू ऑल मॉरिशस. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी.
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में.
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
3: और आखिरी तारीख है 26th of July. तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो.
4: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे. MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
3: और आपका चांस.
4: डोंट मिस इट.
0: म्यूजिक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: साथ दो हमारा जीना हम सिखाएंगे, मंजिल तुम पाओ रास्ता हम बनेंगे, खुश तुम रहो खुशियां हम दिलाएंगे, तुम बस दोस्त बने रहो दोस्ती हम निभाएंगे। Namaskar Adab, dear listeners. That was a beautiful message sent by Mala Ji from Basant Road, Katrabon. जिसके जरिए हमने शुरुआत की प्रोग्राम के इस दूसरे घंटे का। Welcome to all on the frequencies of Radio Masti.
1: RM2
2: Radio Masti.
1: Allez là, flashez, spé des bocs, coup de métrique. Depuis 17 jusqu'à 31 juillet, Vin profite d'un méga promo, l'ON Grand Sélection produit pour ou la case. Jusqu'à 50% discount, l'eau sanitaire, robinetterie, lavabo et collage, prix là, flash net, promo là, extra. Métrique, une enseigne du groupe KRMG. RM2
2: Radio Musty.
3: Music, tuk-tuk-tuk.
2: RM2 Radio Musty.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: अभी थैंक्स आपके न्यूमरस मैसेजेस के लिए जो आप भेज रहे हैं ऑन 549-9294। हेलो संजीव, थैंक यू फॉर द सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म धुरंधर, गहरा हुआ, लवली सॉन्ग्स। मैसेज हैं इनकी ओर से जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, सो प्लीज जब भी आप हमें मैसेज, रोशनी जी, यस, मेक इट अ पॉइंट टू ऐड योर नेम्स व्हेनेवर यू आर सेंडिंग योर मैसेज, लेकिन थैंक यू आपके बहुत ही प्यारे विचारों के लिए। नेक्स्ट सॉन्ग उसको कहेंगे अनिता जी की ओर से फ्रॉम फ्लैग कुकिंग एंड एंजॉइंग द नाइस सॉन्ग्स। उनकी ओर से हैप्पी वर्निंग एनिवर्सरी टू रोमन सचिन और सिद्धि एथली क्योर पिप। साथ ही साथ नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर Switzerland family of Flack. जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, and also next गाना आ जाता है इनकी ओर से, देविका जी की ओर से from Hotel Blanche. Superb songs लिखती हैं. Please dedicate next song for Habib Rakesh and दो बेटे रौनक और तुषार के लिए और प्यारी मामा शकीला के लिए. Thank you. मनीषा जी ने हमें याद किया है, उनकी ओर से नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर डॉटर अवनी एंड क्यारा एंड आल्सो फॉर हबी रोशन और ललिता जीतन जी के लिए. ऑलवेज कनेक्टेड वेव रेडियो मस्ती. फॉर ऑल दोस सेलिब्रेटिंग द वेडिंग एनिवर्सरी ऑन दिस स्पेशल डे, दिस वन गोज फॉर यू स्पेशली.

बड़ी क्विकली आपके मैसेजेस के साथ तैयार भाई को अस्सलाम वालेकुम साथ निभाने के लिए नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग जब भी अपना मैसेज लिखे तो अपना नाम सबसे पहले लिखे मामा रेनू शी वॉज वेरी हैप्पी टू बी टू हैव अटेंडेड द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत यस्टरडे और उनकी बेटी पूजा को कहती हैं थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग हर विद अ सरप्राइज टिकट थैंक यू नेक्स्ट सॉन्ग आल्सो गोइंग वीना जी की ओर से फॉर ऑल दोज जो उन्हें जानते हैं मिस्टर कमलदीप जी थैंक यू आप भी हमेशा हर संडे को जुड़ जाते हैं इस समय लवली सिलेक्शन मैसेज हैं दागन श्वेता रविश प्रशांत लेवेशा की ओर से फ्रॉम रोशनोआ हाय बॉस प्रीतम बीतू जी की ओर से फ्रॉम पीतों नेक्स्ट सॉन्ग फॉर हिज होल फैमिली एंजॉइंग एंड द नेक्स्ट वन आल्सो गोइंग फॉर गीता सीता बलोराम फैमिली फ्रॉम शतो बेनागस नमस्ते संजीत तीना जी फ्रॉम शमुनी रिक्वेस्टिंग नेक्स्ट सॉन्ग फॉर द होल फैमिली एंड दिस वन गोइंग फॉर हबी रंजीत प्रेमिला जी की ओर से फ्रॉम प्लेंटे पपाई एंड स्पेशली गोइंग भरद्वाज जी के लिए ऑल्सो फॉर द होल विदेशी फैमिली

0: fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: Music tak tak tak.
2: RM2 Radio Musti.
3: Many essential man readers who are older professionals above 30 हमेशा अपने आप से सोचते हैं how can I look older, more mature and thus get taken more seriously. ये उन लोगों की एक डिलेमा होती है. वे चाहते हैं कि लोग उनको ज्यादा सीरियसली लें, हालांकि वे सिर्फ 30 साल की उम्र के होते हैं, between 30 and 40.

0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: Once again, a very happy wedding to all those celebrating the wedding on this weekend. Aur jitne bhi log apne wedding anniversary mana rahe hain, aapko hardik shubhkamnaye from the whole Radio Musti team. Happy birthday to Shanaya, jo aaj 10 saal ki ho rahi hai. Best wishes coming from Khushbu, Papa Chandan, and sister Shanali and Shanvi. Saath hi saath, the next one going Hannah Jiki will say for the whole Shivsaran family. Nashanji, thank you for your beautiful picture messages. Purnima ji kehti hai, wow, what a playlist, Sanji. Thank you, Purnima ji, jo triyule se hamara saath nibha rahi hai. और सचिता जी, सचिता बुध जो हमसे कैम्ब्रिज से जुड़ी हुई हैं, लिखते हैं वाह क्या बात है संजी, क्या बात है, गानों से मजा आ गया. शुभ दिन टू ऑल लिसनर्स इन मॉरिशियस. थैंक यू सचिता जी. एंड दिस नेक्स्ट वन गोइंग फॉर ऑल दोस जिससे में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम देवी चरण जी लिसनिंग बाय द सी साइड. जय सियाराम. दिस वन going for Diya and for Divya Darshini, equally for Damad Keshav and Habi Shona ji. Ye hai Devika Rani ji ki aur se message. To Glen Park Vakwa ke hamare sabhi sunne walon ko hum karte hain salam. Thank you for joining me. Sadi sadi ye gana chata hai for Krishni from Confu.

0: पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। समुद्र तटों को कटाव से बचाने, समुद्री जैव विविधता को संरक्षित रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मैंग्रोव्स की अहम भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव्स दिवस पर ग्रीन पीस अफ्रीका स्थानीय निवासियों और स्वयं सेवकों ने रिविया डे क्रियोल में सफाई और जागरूकता अभियान चलाकर इनके संरक्षण का संदेश दिया। वाकाशो हादसे को आज 6 साल पूरे हुए। 1000 टन से ज्यादा तेल समुद्र में फैलने से मॉरिशस ने अपनी सबसे बड़ी पर्यावरणीय त्रासदियों में से एक का सामना किया था। आज भी पॉइंट डिस्नी के लोग उस दर्दनाक घटना और समुद्र को बचाने के लिए पूरे देश में उमड़े अभूतपूर्व एकजुटता को याद करते हैं। भारत में शिक्षा मंत्रालय की कमान अब प्रहलाद जोशी के हाथों में। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। और भारत में मानसून का कहर जारी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति। सबसे गंभीर हालात असम में हैं, जहां बाढ़ से अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब समाचार विस्तार से। समुद्र तटों को कटाव से बचाने, समुद्री जैव विविधता को संरक्षित रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मैंग्रोव अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन बढ़ते दबाव के बीच इन प्राकृतिक वनों की रक्षा आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस के अवसर पर ग्रीन पीस अफ्रीका स्थानीय निवासियों और स्वयं सेवकों ने रिविया डे क्रियोल में सफाई और जागरूकता अभियान चलाया। ज्यादा जानकारी करुणा लालू के साथ।
1: प्लास्टिक की बोतलें, पैकेजिंग और अन्य कचरा। लगभग 30 स्वयं सेवक जो ग्रीन पीस अफ्रीका के सदस्य और रिविया डे क्रियोल के स्थानीय निवासी हैं, मैंग्रोव की सफाई के लिए तैनात हुए। विनय बिचवा ने कहा, मैंग्रोव में झींगे और ऐसे जीव होते हैं जिनसे मछली

पकड़ी जा सकती हैं। प्रदूषण नहीं करना चाहिए, करीब 3 साल के लिए हमें रुकना चाहिए ताकि इनकी संख्या फिर से पहले जैसा हो सके। एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के रक्षा के लिए एक ठोस कदम जो अनेक पशु पक्षियों और

0: आखिर ये हाथ बटा सके। समंदर पहले जैसा नहीं रहा, बहुत प्रदूषण है। लोगों को जागरूक करने और कदम उठाने के लिए कुछ लोग होने चाहिए। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन मैंग्रोव पर गंभीर प्रभाव डाल रही हैं। ये तटीय वन लगून के संरक्षण में अत्यंत अहम भूमिका निभाती हैं।
1: Qui fait un effet focus sur les océans parce que Maurice est la cinquième plus gros territoire la mer dans le monde.
0: इस दिशा में ग्रीन पीस अफ्रीका ने मॉरिशस में अपना पहला सामुदायिक अभियान के तहत स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से तटीय इको प्रणाली के संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई। उदाहरण के लिए, यदि मछलियां माइक्रोप्लास्टिक खाएंगी और हम मछली तो बीमार हो जाएंगे। यहाँ के मछुआरों ने भी कहा कि मछलियों की संख्या घट गई है। मैंग्रोव्स मछलियों का आश्रय हैं, इनके प्रदूषण से मछलियों को खतरा होगा। ग्रीन पीस अफ्रीका के लिए मॉरिशस में ये पहला अभियान मैंग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की शुरुआत है। संगठन स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर पूरे द्वीप में संरक्षण संबंधी प्रयासों को और मजबूत करने का कार्य जारी रखेगा।
2: 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन वाकाचो की वो तस्वीर आज भी मॉरिशस की यादों में ताजा है। नीले समुद्र पर फैला काला तेल, तटों पर छाई चिंता और प्रकृति को बचाने के लिए सड़कों से लेकर समुद्र तक उमड़ा अभूतपूर्व जनसैलाब, ये केवल एक पर्यावरणीय आपदा नहीं थी बल्कि पूरे देश की एकजुटता की मिसाल भी बनी। आज उस ट्रेजेडी के 6 साल बाद पुणे के लोग उन दिनों को याद कर रहे हैं।
0: पानी पर चमकती धूप के बीच पुणे का सुंदर नजारा। इस बीच ठीक 6 साल पहले यही दृश्य वाकाशो जहाज की विशाल आकृति से विकृत हो गया था। ये मालवाहक जहाज कोरल रीफ पर फंस गया था, जबकि उसके भीतर लगभग 3,900 टन ईंधन तेल भरा हुआ था। ये मॉरिशस की सबसे बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी की शुरुआत थी। दिन बीतने के साथ ही समुद्री लहरों के लगातार दबाव से जहाज के ढांचे में दरारें बढ़ती गईं। लगभग 1,000 टन ईंधन तेल लगून में फैल गया, जिससे प्रवाल भित्तियां, मैंग्रोव और समुद्र तट गंभीर रूप से प्रदूषित हो गए। इस त्रासदी ने पूरे मॉरिशस को झकझोर दिया। अपने लगून और आसपास के छोटे द्वीपों को बचाने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया। मेबर्ग वाटरफ्रंट इस राष्ट्रीय एकजुटता का प्रमुख केंद्र बन गया। राहत और बचाव अभियान का संचालन पॉइंट देशने से किया गया। 6 वर्ष बाद भी इस पर्यावरणीय आपदा के प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, फिर भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कुछ स्थानों पर प्रकृति ने धीरे धीरे खुद को फिर से संभाल लिया है। आज वाकाशो का एक हिस्सा समुद्र की गहराइयों में पड़ा है। 6 साल बाद समुद्र का पानी फिर से अपने फिरोजी रंग में लौट आया है, लेकिन इस शांत सतह के नीचे उस तेल रिसाव की पीड़ा अभी भी दबी हुई है, जिसने मॉरिशस के इतिहास पर एक दुखद छाप छोड़ी है। इस आपदा ने यह भी साबित किया कि सबसे कठिन समय में मॉरिशस के लोग एकजुट होकर अपने देश और अपने भविष्य की रक्षा के लिए आगे आ सकते हैं।
2: मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पेश किए जाएंगे। अप्रोप्रिएशन बिल के बाद अब इन दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी, जिनका उद्देश्य बजट में घोषित कदमों को लागू करना है। इन दोनों विधेयकों को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम प्रस्तुत करेंगे। इनके तहत 80 से ज्यादा कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।
3: हर साल बजट भाषण के बाद बजट में घोषित उपायों को लागू करने के लिए संसद में कई विधेयक पेश किए जाते हैं। जून के अंत में अप्रोप्रिएशन बिल, जिसे मनी बिल भी कहा जाता है, पारित होने के साथ एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। इस विधेयक को तैयार करने और संसद में पेश करने की प्रक्रिया राष्ट्रीय सभा के स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत तय होती है। इसके जरिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी धन जारी करने की अनुमति मिलती है। अब मंगलवार 28 जुलाई को अगला महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा। कर व्यवस्था और पब्लिक फाइनेंस से जुड़े बजट उपायों को लागू करने के लिए फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा, जिसके तहत 25 कानूनों में संशोधन का

0: प्रस्ताव हैं। इसमें सेवानिवृत्ति पेंशन पाने की आयु और उसकी राशि तय की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पेंशन में भी बदलाव का प्रावधान है। इसके अलावा चीनी, शराब और बीमा पर कर से जुड़े प्रावधानों के साथ साथ पूर्ण गरीबी की नई परिभाषा भी दी जाएगी। वही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल आर्थिक और वित्तीय सुधारों से संबंधित हैं। इसे लागू करने के लिए 58 कानूनों में संशोधन प्रस्तावित हैं। उदाहरण के तौर पर पब्लिक हॉलीडेज एक्ट के तहत यदि कोई आम छुट्टी का दिन रविवार को पड़ता है तो उसके अगले दिन को पब्लिक हॉलीडे माना जाएगा। पब्लिक हेल्थ एक्ट में हर संपत्ति मालिक के लिए ये सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि उसकी जगह पर मच्छरों के पनपने की कोई स्थिति न बने, वरना जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। वर्कर्स राइट्स एक्ट के तहत प्रत्येक महिला कर्मचारी को हर महीने एक दिन का मासिक धर्म छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नॉन सिटीजन्स एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस एक्ट में संशोधन के तहत विदेशी छात्रों को वर्क परमिट मिलने पर काम करने की अनुमति होगी। ये दोनों विधेयक प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री संसद में पेश करेंगे। मॉरिशस में आलू की फसल का मौसम शुरू हो गया है। हर साल मौसम और जलवायु के अनुसार देश में 13,000 से 16,000 टन तक आलू का उत्पादन होता है। मॉरिशस में सबसे ज्यादा उगाई और खाई जाने वाली किस्म स्पुंता है। स्थानीय उत्पादन से देश की लगभग 60% मांग पूरी होती है। हमारी टीम बगातेल पहुंची, जहां एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मार्केटिंग एसोसिएशन से जुड़े एक खेतीहर 5 एकड़ जमीन में आलू की खेती कर रहे हैं। 3 महीने से ज्यादा की खेती के बाद बगातेल के इस खेत में 1 हफ्ते पहले आलू की खुदाई शुरू हुई है। यहाँ स्पुंता किस्म के आलू 5 बीघा जमीन पर लगाए गए थे। खेतीहर बाली अनथ कहते हैं,
1: AMB
0: के साथ आलू के बीज खरीदे हैं। ये स्थानीय स्पुंता किस्म के हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल फसल बेहतर रहेगी। करीब 8.5 से 9 टन की उम्मीद करते हैं। यहाँ काम कर रहे लगभग 15 मजदूरों में सिर्फ एक ही मॉरिशस का है। बाली अनत का कहना है कि मजदूरों की कमी आज भी किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। जो विदेशी कामगार रविवार के दिन काम नहीं करते, उन्हीं पर निर्भर रहता हूँ। कोई मजदूर नहीं है, बहुत कठिन हो जाता है। हम खेती करते हैं, अन्य सब्जियों के खेत भी हैं, जैसे टमाटर। फसल करने के लिए कोई नहीं मिलता, उन्हें खेत में ही छोड़ देना पड़ता है। हर साल देश में लगभग 25,000 टन आलू की खपत होती है, जिसमें से 60% स्थानीय उत्पादन से पूरा होता है। कृषि उद्योग मंत्रालय खेती के लिए उपलब्ध जमीन बढ़ाने पर काम कर रहा है, ताकि निकट भविष्य में स्थानीय उत्पादन 80% से ज्यादा तक पहुँच सके और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। स्वास्थ्य सेवाएं अब क्वीन विक्टोरिया के लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही हैं। गांव में शुरू किए गए नए हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य स्थानीय निवासियों, खासकर बुजुर्गों को बिना लंबी यात्रा किए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। क्वीन विक्टोरिया के निवासियों को अब इलाज के लिए कई किलोमीटर का सफर तय नहीं करना पड़ेगा। लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए इस क्षेत्र में एक हेल्थ पॉइंट शुरू किया गया है। हमें लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा, हम यहां खून निकालने आ सकते हैं। वृद्ध लोगों को फ्लाक का अस्पताल जाना पड़ता था और वहां से कोंस्टांस का अस्पताल सवारी मिलना आसान नहीं है। खून की जांच, डॉक्टर से परामर्श और नियमित स्वास्थ्य जांच जैसी कई सेवाएं अब यहीं उपलब्ध हैं। फिलहाल ये हेल्थ पॉइंट सप्ताह में एक दिन कार्यरत रहेगा। मंत्री अनिल बेचू कहते हैं,
2: यहाँ पर यातायात का समस्या है, आने जाने के लिए भी समस्या है, ट्रांसपोर्ट का समस्या है। तो यहाँ के ब्रीज जो लोग हैं हमेशा हमसे कहा करते थे कि अगर यहाँ पर एक ऐसा संस्था, स्वास्थ्य का संस्था हो, जहाँ पर कुछ ना कुछ अपने जो बीमारी है उसके लिए कुछ इलाज हो सके। किसी को बुखार है या ब्लड टेस्ट करना होता है या कोई ऐसी छोटी बड़ी समस्याओं होती है, तो ये लोग यहीं पर इनकी इलाज हो सकती है। रात में जाकर प्रतिदिन यहाँ पर डॉक्टर भी यहाँ रहेगा। आजकल डॉक्टरों की कमी है सरकार अस्पतालों में, तो इसलिए एक दिन कर रहे हैं, फिर से बाद में 5 दिन हो जाएगा।

0: ये स्थानीय पहल क्वीन विक्टोरिया के निवासियों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और आसान बनाएगी। विदेशी खबरों में, भारत में शिक्षा मंत्रालय की कमान अब प्रहलाद जोशी के हाथों में है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच सरकार ने प्रश्न पत्र लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए नया विधेयक भी संसद में पेश करने का फैसला किया है। ज्यादा जानकारी आस्था गोविंद तमन के साथ।
1: प्रहलाद जोशी को भारत का नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा चल रहे सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में शिक्षा सेक्टर में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और वे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए एक नया विधेयक संसद में पेश करने का फैसला किया है। प्रस्तावित पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 में एग्जाम पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी के मामले में सख्त सजा और अधिक आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। इसके तहत परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े संस्थानों और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी तय करने का प्रस्ताव है। बिल में ये भी प्रावधान है कि एग्जाम पेपर लीक से जुड़े मामलों में दायर अपीलों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर किया जाए ताकि ऐसे मामलों में जल्द न्याय सुनिश्चित हो सके। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और मजबूत बनाना है।
0: भारत में मानसून अब राहत नहीं बल्कि कई इलाकों में आफत बनता जा रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। सबसे गंभीर हालात असम में है, जहां बाढ़ से 66 लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग अब भी इस आपदा से प्रभावित हैं। राहत और बचाव अभियान जारी हैं, जबकि मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: भारत में इस समय मानसून की तेज बारिश कई राज्यों के लिए मुश्किलें लेकर आई है। भारी वर्षा के कारण बाढ़, जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे गंभीर हालात पूर्वोत्तर के राज्य असम में हैं, जहां बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। राज्य के कई इलाके अब भी पानी में डूब गए हैं और 650,000 से अधिक लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बाढ़ से सड़कों, पुलों और खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में लोगों तक भोजन, पीने का पानी और अन्य जरूरी सहायता पहुंचा रही है। असम के अलावा भारत के पश्चिमी, उत्तरी और मध्य हिस्सों में भी भारी वर्षा का असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सड़क संपर्क भी बाधित हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, नदी और निचले इलाकों से दूर रहने तथा केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है।
0: नोल तूफान आज तड़के दक्षिणी चीन के तट से टकराया। ये अपने साथ तेज हवाएं और भारी बारिश लेकर आया। इसके कारण ग्वांगडोंग प्रांत में लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है और दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और अब मौसम संबंधी जानकारियां करुणा लालू के साथ।
2: टापू के करीब विकसित होने वाले बादल आज रात को हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि आज रात को पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिरे रहेंगे और जहां तहां बारिश होगी। कल सुबह और दिन के दौरान भी मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दोपहर में बादल घिर आएंगे दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर

50 तक हो सकती है और कल सुबह 3 मीटर तक हो सकती है। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। साथ में पश्चिमी एवं दक्षिणी लगूनों में भी कल सुबह से न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त 5:50 पर, कल सूर्योदय 6:42 पर।

0: और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें शिव का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे। हैमलेट रोड मुसलमान सैंत आंद्रे में 78 साल की 78-year-old की श्रीमती चुरामनी दिगम, पैदाश नाम लक्ष्मण और जो चुरामनी से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे राकेश दिगम के घर हैमलेट रोड मुसलमान सैंत आंद्रे से उठाकर मुसलमान सैंत आंद्रे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 11 AM। 92 साल की 92-year-old की श्रीमती ज्ञानमती गुरा, पैदाश नाम कालीचरण और जो ज्ञान से ज़्यादा जानी जाती थी और पहले शांड स्ट्रीट बोबासें रहती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे लाशापेल आदों तेली एनसन्स रॉयल रोड बोबासें से उठाकर रिपाई सैं पियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 11:30 AM। रॉयल रोड शामुनी में 55 साल के 55-year-old के श्री जितेंद्र भिका, जो राजेश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे भिका कौशिक के घर रॉयल रोड शामुनी से उठाकर कौगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमरो एट 1 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Music, Dr. Gutter.
2: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 6:26 यू लिसनिंग टू म्यूजिक टकटकाटक संजय के साथ वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ द प्रोग्राम. समाचारों के बाद बैक टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक. जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं ऑन दिस 26th of July, लेट मी टेल यू कि यू आर शेयरिंग योर बर्थडे विद अ वेरी हैंडसम एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड. उन्होंने ज़रा फिल्मों में काम नहीं किया है. ही वाज सीन इन मासूम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, जो छोटा सा लड़का था. एंड देन बाद में फिल्म मोहब्बतें में, मल्टी स्टार फिल्म मोहब्बतें में भी उन्होंने काम किया था. यू आर शेयरिंग योर बर्थडे विद जुगल हंसराज. सो जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस डे.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: शाम के 6:40। थैंक यू डियर लिसनर्स फॉर एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल रोमांटिक म्यूजिकल राइड हमारे संग एवरी संडे आज फ्रॉम 4 up till 7। एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 549-9294। जैसे कि राजीव साहब ने कहा किया फ्रॉम सेंट पियर, उनकी ओर से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू नीटू जो परमा रोड कैटरबोर्न की रहने वाली हैं और जिन्होंने ट्यूजडे 21 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाया। Never too late to wish someone a very happy birthday. लेते हैं ये अगला मैसेज। नमस्कार संजी, नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग। इनकी ओर से अ वेरी हैप्पी बर्थडे नीतीश जी को वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड इक्वली प्यारा जी को भी हैप्पी बर्थडे मामा श्वेता और पापा अश्विन की ओर से। थैंक यू फॉर सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। और लेते हैं ये अगला मैसेज। पूजा जी हमारा साथ निभा रही हैं और पूजा की ओर से ए नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर हर होल फैमिली जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ सेंट पियर।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: अवसर तो बहुत सारी मिलते हैं हम सबों को, बात यह है कि कौन कौन उन अवसरों को से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, या जब ऐसे अवसर आपके सामने आते हैं तो आपकी आंखें खुली होती हैं या तो आप सोए हुए रहते हैं। इट्स ऑल ऑन वेदर यू आर अवेक टू द ओकेजंस द अपॉर्चुनिटीज दैट कम इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग श्रेष्ठा दानी की ओर से फ्रॉम फोंजुसाक for Habida Aglish, sister Samita Sumaru, and for nephew Sumaru. Thank you, Shreshra Ji, aapke is message ke liye. Lete hain ye agla message. Reena Ji ki or se, Reena Sanjita ki or se from Katko Koko, dedicating next song for two babies, Pratyush and Durvansh, equally for Sheena, mom Renuka, dad Manoj, and for the whole Audio Yaar family. Mm-hmm.

0: अरे दुनिया हसीन हो जाए सबों के लिए, टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। हमारे दोस्त निखिल आ चुका है आपका साथ निभाने। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय, सी यू नेक्स्ट संडे आज फ्रॉम 4।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: आखिरी संडे जुलाई का साथ मेरा और आपका. नमस्कार, स्वागत है आपका इस मॉडर्न महफिल में, जहां कुछ तराने होंगे जो आपने सुने ना होंगे और कुछ ऐसे जिनको सुनकर कभी अनसुना कर दिया होगा. बातें भी होंगी अल्फाजों की, सुरों की, एहसासों की, फसानों की. तो तय करते हैं साथ में ये रात से शाम का सफर. मैं हूं निखिल, यू आर लिसनिंग टू RM2 और ये है बॉलीवुड सिज़ला.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, अगर आप भी काम पर हैं तो आपसे कहेंगे हिम्मत रखिए, आपका शिफ्ट हम साथ में खत्म करेंगे. You're listening to RM2. यहाँ पर हो रही है भरपूर म्यूजिकल मस्ती. अगर आप भी हमें बताना चाहते हैं कि आप काम कर रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं, 5499-1294, खास आपके लिए, आपका हौसला अफजाई करने के लिए, ये अगला गाना फ्रॉम द मूवी सीक्रेट सुपरस्टार.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: I'll be lonely, hum bhi lonely. This was Lonely from Khiladi 786 in the voice of Himesh Reshammiya. जी हाँ, 2012 के तड़कते भड़कते गाने से होकर हम आते हैं आज के तड़कते भड़कते गाने पर. जी हाँ, आवारा पन 2 is all the craze, क्योंकि उसके तीन गाने आ चुके हैं और तीनों भाई एक से बढ़कर एक. उसी में से वे जुनू, a lovely song in the voice of Subodh Sharma, खास आपके नाम.

0: to Radio Musty.
1: Yo, hello, testing, one, two. Yeah.
2: कभी सोचा है
3: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन

0: NBC Radio WhatsApp number 5251-6363.
1: और आखिरी तारीख है 26th of July. तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो.
0: NBC Radio presents One Day RJ. NBC Radio पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस.
0: Don't miss it.
2: RM2
3: Radio Musti
2: Bollywood Sizzler.
3: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, दिस वॉज मक्खना फ्रॉम द मूवी ड्राइव. और मक्खन जैसे आपके मीठे मीठे, आपके चापलूसी वाले जो मैसेजेस हैं वो पढ़ लेते हैं. चापलूसी नहीं, लेकिन मक्खन जैसा प्यार तो है. जी हाँ, हाई आउटस्टैंडिंग निखिल, व्हाट्स अप ड्यूड, दागन, श्वेता, रवीश, प्रिशा, लवशा एंड आबादी फैमिली, वैष्णव, आपके नाम करेंगे हम ये अगला गाना जो कि काफी स्पेशल होने वाला है. हेलो आरएमटी टीम, अमेश ना हियर. आपकी माँ देवरानी बंसुदेव का बर्थडे है आज, एंड स्पेशल विशेज आर कमिंग स्पेशली फ्रॉम हस्बैंड ज्वाला, डॉटर्स रेशमा, अनुषा, माधवी, बेटा अंकुश, फ्रॉम सन इन लॉ विशाल, नीतीश, भूवेश, डॉटर इन लॉ येशना, एंड फ्रॉम ऑल अगैन ग्रैंड किड्स, तुष्टि, एंजल, पल्लवी, Yani, Leah, Kianj, Leanne, we all love you, Mom, and lots of good wishes to you. Thank you very much, and thank you very much for sharing this special occasion with us on RM2. Hello, Nikhil ji, how are you? Had a great weekend. Ji haan, aapka kaisa raha, Roshni ji? Thanks for Na Tere Bin. May I request a title song of Shiddat movie? Please, Shubh Sunday evening. Ji haan, ho sake to wo chala denge, jaise ki abhi hum chalane wale hain, a very, very special song for

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जहाँ पुराने गाने पुरानी रिकॉर्डिंग्स की बात ही कुछ और होती है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ चाहे जितना भी ट्राई कर लें वो वाली फील आती नहीं, बट वी कैन स्टिल ट्राई।

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते हम अपने आधे सफर तक आ पहुंचे हैं। थोड़ी सी शाम छूटी है, थोड़ी सी रात पकड़ी है, आवाज अब भी निखिल की है और महफिल का नाम है बॉलीवुड सिज़ला, जहां हम सुरों में लिपटे आपके एहसासों और कहानियों के लिफाफे खोलते जाते हैं। आप सफर पर हों, काम पर हों,

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जहाँ दोस्तों, we come to affairs, world affairs. पिछले हफ्ते, पिछले कुछ दिनों में world news में हमें new generation की बगावत देखने को मिला. कौन सही था, कौन गलत, इसका इसके नजरिए बहुत हैं, इसमें हम घुसेंगे नहीं. लेकिन मुझे क्या दिखा कि इंसानियत मुझे दिखा, मुझे ये दिखा कि दूसरों के लिए खड़ा होने का अंदाज भले हर जनरेशन का अलग हो, लेकिन वो जज्बा जो हमें इंसान बनाता है, जो हमें साथ लाता है, वो अभी भी बरकरार है. बॉलीवुड की भाषा में, म्यूजिक की भाषा में बताएं तो गाना गाने वाला चाहे बदल जाए, लेकिन शायद वो धुन, वो गाना एक्चुअली वही रहता है.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: अगर आप उन लोगों में से हो जो मंडे की चिंता संडे ही से शुरू कर देते हैं, तो आपसे कहेंगे बस कुछ 8 मिनट हमें दे दीजिए, हमारे साथ इस गाने के साथ झूमिए नाचिए, अपने लिए खुद अपने के लिए कुछ पल निकालिए।

0: बस मेरे लिए।
1: बॉलीवुड सीज़लर
2: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ चुनौतियां जरूर आ जाती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर नई सुबह की एक नई उम्मीद लेकर जरूर आती है। हर नया हफ्ता एक नया हौसला लेकर आता है। इसलिए मुझे बहुत बहुत पसंद है ये संडे शाम वाला लाइव स्लॉट आपके साथ, क्योंकि आपको याद दिलाने का मौका मिल जाता है कि कभी एक अच्छी बात, कभी किसी अपने से मुलाकात, और कभी कभी बस एक प्यारा सा गाना हमें फिर से हौसला दे सकता है। जी हाँ, आपके हौसले के लिए ये जेम जो मैं लाया हूँ फ्रॉम 2007, नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में, वेरी एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत सारे लोगों को पता होगा।

0: FM2
1: Radio Musti.
2: Testing 1 2
3: Yeah. कभी सोचा है
4: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
4: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
3: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
3: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए।

0: और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC Radio presents वांदे आजी। MBC Radio पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: RM2
3: Radio मस्ती।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: कुछ गाने बस गाने नहीं होते, बस एहसास बन जाते हैं, वो अल्फाज नहीं रहते, वो एक वक्त बन जाता है जो हम, जब भी वो गाना चले हम उसी वक्त में चले जाते हैं, उसी दौर में चले जाते हैं, हम क्या कर रहे थे वहाँ पर, किसके साथ थे, क्या क्या सोचा था, क्या क्या हुआ हमारे साथ। जी हाँ, इसी याद को लेकर, इसी एहसास को लेकर हम बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, और ये हम करेंगे खासकर रोशनी जी के लिए और भावना जी के लिए।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का बॉलीवुड सिज़ल यहीं पर समाप्त होता है। जाते-जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिंदगी की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए और खुद अपने के लिए हमेशा थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिएगा। मैं हूं निखिल, आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, शुभरात्रि और मिलते हैं अगले संडे इसी वक्त रेडियो मस्ती पर।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: अब वेरी गुड इवनिंग सभी को, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एंड रात अभी जवान है और बॉलीवुड के सुपर हिट गाने लेकर मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपका साथ निभाने के लिए। कंटिन्यू टिल 12 PM। भाई आज का दिन अगर थोड़ा टफ रहा और थोड़ी सी टेंशन, तो उसको साइड में रखिए, क्योंकि हर नई सुबह की शुरुआत एक सुकून भरी रात से होती है। टेक योर टाइम, अनवाइंड और म्यूजिक दुनिया में आपका स्वागत है।

0: RM2 Radio Masti.
1: हाँ ये सच बात है कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसमें छोटी छोटी खुशियां जरूर होती हैं। उन्हीं खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए चलिए सुनते हैं कुछ ऐसे गानों का सिलेक्शन जिनसे आपका मूड बिल्कुल सेट हो जाएगा, चाहे कहीं भी हो, घर पर हो या फिर अभी काम पर या फिर कमिंग बैक या गोइंग टू वर्क, जो भी हो रास्ता अब पड़ गया जब हमसे वास्ता, तो म्यूजिक का आनंद तो लेना ही पड़ेगा।

सुन। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: Late Night Grooves, RM2 पर. और भाई अगर म्यूजिक की बात करें तो हर एक गाना एक दूसरे से अलग होता है. कंपैरिजन, वैसे कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस कम होता है अगर अपना कंपैरिजन किसी और से करें तो. और ग्रैटिट्यूड से हैप्पीनेस बढ़ती है. आज रात अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए और बॉलीवुड के बेस्ट मेलोडीज गानों के साथ जुड़ जाइए. मुस्कुराइए.

0: रेडियो मस्ती।
1: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, माँ बाप भाई यहाँ तक के।
2: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर।
1: डरता हूँ कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और दोबारा चोट खाने की हिम्मत।
2: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you.

हमारी जिंदगी जैसे एक किताब और हर किताब में अलग अलग चैप्टर्स तो होते ही हैं। कुछ चैप्टर्स मुश्किल होंगे लेकिन याद रखिए हीरो कभी हार नहीं मानता। तो चलिए फिल्मी अंदाज में रात को और खूबसूरत बनाते हैं। टू ऑल द वंस जो हमारा साथ दे रहे हैं दूर से यानी कि सात समुद्र पार, आपकी जिंदगी में भी बॉलीवुड के स्टाइल को लेकर हम हो गए शामिल, आप ही वहीं पर, तो चलते हैं साथ।

भाई कॉफी हो या चाय, बस खिड़की के पास बैठकर हवा का मजा लेते हुए वो लोग जिनको अभी फिलहाल नींद नहीं आ रही, जो भी आपका लेट नाइट रिचुअल है उसमें हम ऐड करें बॉलीवुड का तड़का। वैसे कल काम होने वाला है और जब नया हफ्ता शुरू हो रहा है तो नई एनर्जी के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ इट्स इम्पोर्टेंट कि सारी प्लानिंग अभी, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो लेकिन कर लीजिए अभी से कल के लिए।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: भाई जिंदगी में सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता, कुछ सपने वक्त लेते हैं। तो आज रात थोड़ा स्लो डाउन कीजिए और म्यूजिक के साथ हर पल को महसूस कीजिए, क्योंकि जब तक किसी चीज में आप फुल इन्वॉल्व नहीं होते तब तक उसका रिजल्ट भी आपके हिसाब से नहीं आ पाता।
3: संजना, संजना,
4: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
5: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

0: रेडियो मस्ती।
1: वीकेंड का दी एंड जरूर हो रहा है, लेकिन कल एक बार फिर से नई अपॉर्चुनिटी, एक नया दिन और 24 आवर्स आपके लिए बिल्कुल तिजोरी में सेफ और सुरक्षित। तो आज अगर कुछ मिस हो गया तो फिक्र मत कीजिए, अपनी कल की प्लानिंग रखिए और ये सोच लीजिए कि जो भी करेंगे अपनी मंजिल के पास पहुंचने के लिए, कल फिर एक नया चांस आपको मिलेगा। इंतजार कर रहा है एक्चुअली, बस ये रात कट जाए और यूं ही ये जो पल है म्यूजिक स्टाइल में बीत जाए।

ये रात को जो ख्याल आते हैं ना, ये जो सपने आते हैं या थॉट्स आती हैं, ये बहुत ही स्पेशल होती है, क्योंकि इस वक्त कोई रश नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, और काम आराम से आप कुछ सोच पा रहे हैं। ये लेट नाइट थॉट्स और बॉलीवुड के गाने, इनका जो रिश्ता है ना, वो भी बहुत कमाल का है। दोनों दिल को छू जाते हैं और कभी कभी वो बात कह देते हैं जो हम शब्दों में नहीं कह पाते, या फिर दिन के दौरान जैसे मैंने कहा भागा दौड़ी में सोच नहीं पाते। ये वक्त है अपना, मी टाइम, म्यूजिक टाइम।

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: ऐसे ही बैठे बैठे कभी किसी की याद आती है या फिर लगता है कि आज मुझे कर देना चाहिए था, या फिर एक मैसेज तो हर वक्त है ना। अगर आज किसी को थैंक यू कहना चाहते हैं या सॉरी भी, तो एक छोटी सी अप्रिसिएशन या एक छोटा सा मैसेज पूरा दिन सेट कर सकता है। और इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम तैयार हैं गानों के साथ। लेकिन ये जरूर सोच लीजिए कि आज अगर कुछ करना था नहीं कर पाए, तो मन में वो बात ना रह जाए कि काश ऐसा होता। अरे वक्त अभी बाकी है, संडे अभी बाकी है।

कहते हैं कि कामयाबी सिर्फ डेस्टिनेशन मंजिल में नहीं, एक जर्नी है, और इस जर्नी में जिसका साथ मिल जाए और उसके मिलने से चेहरा खिल जाए तो इससे तो बढ़िया बात ही नहीं। तो अगर आप रस्ते में हैं अभी भी तो बस ये अपने भरोसा कीजिए कि आपके कदम जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन मंजिल और करीब और पास धीरे धीरे ही सही आती चली आ रही है। अगर मन में विश्वास रखेंगे, अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे तो फिर रोकेगा कौन। म्यूजिक आपके साथ 24/7 साथ देता हुआ।

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: भाई रात थोड़ी गहरी हो रही है और उम्मीद की रोशनी कभी कम नहीं होती, पर चाहे रात गहरी हो कल का दिन नए मौके लेकर आएगा। और ये हम जरूर जानते हैं कि आज अगर आपने फैसला कर लिया कि कल एक नई शुरुआत होगी और शुरुआत में कोई नई बात होगी तो फिर यही होगा। ये बस माइंड की कंडीशनिंग है, माइंड की कंडीशनिंग। कैसे आप एक सिचुएशन को बहुत स्ट्रेसफुल पाते हैं और कभी आप उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से सोल्यूशन निकाल भी पाते हैं, तो बस यही है दिमाग की कहानी। कभी यादें और कभी कुछ बातें, और उनके बीच में शामिल होते हुए ये बॉलीवुड के ट्रैक्स।

चलिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है कि आप और हम इस म्यूजिकल सफर में यहीं तक चले, लेकिन भूलिए मत 24/7 म्यूजिक आपके लिए साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी ऑन RM2। अब बस जल्दी ही यानी कि अगली सुबह भाई मंडे मॉर्निंग आपसे जल्दी मुलाकात होगी और म्यूजिक साथ होगा तो जिंदगी में यही बात होगी, मैजिकल और म्यूजिकल। अभी के लिए इजाजत, गुड नाइट। RM2 रेडियो मस्ती।